नमस्कार एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं।

FM बैंड 102.7 MHz ते सवेर ते सफर दा आगाज परमात्मा दे नाम दे नाल तुसी सरवन करोगे भक्ति रस दे नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना। छे बज के 5 मिनट ते वंदना प्रोग्राम सरवन करन तो बाद 7 बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 7:02 ते जानकारी दे नाल भरपूर प्रोग्राम होएगा गुड मॉर्निंग जलंधर। आठ बज के 3 मिनट ते साडे प्रादेशिक चैनल तो पंजाबी दे विच खबरां सुनोगे। आठ बज के 40 मिनट ते प्रोग्राम होएगा पंजाबी गीत संगीता अड्डी टप्पा। 9 बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 9:02 ते सफर होएगा दिल अपना पंजाबी दा। व्हाट्सएप दे जरिए ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकोगे साडे। दस बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 10:02 ते हिंदी गीत संगीत का सिलसिला होएगा प्रोग्राम होएगा गीत बहार। ग्यारह बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 11:02 ते थोड़ी फरमाइशा नु पूरा करता होया सिलसिला होएगा प्रोग्राम होएगा पंजाबी तड़का। बारह बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 12:02 ते थोड़े घर नूं चार चन लगांदा होया सिलसिला होएगा प्रोग्राम होएगा होम स्वीट होम। एक बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज और 1:40 ते प्रादेशिक चैनल तो पंजाबी खबरां होणगियां और 1:50 ते मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा। दो बजे दा सिलसिला होएगा प्रोग्राम होएगा दिल आज शायर है और 2:30 ते प्रसारण होएगा रेनबो दिल्ली तो

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से 6:05 हो रहे ने वेला हो रहा है पक्की रासी नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना नो सरवन करन दा। आओ प्रोग्राम ते इस सफर दा आगाज करने आ मूल मंत्र दे नाल।

प्रीत न कीजिए पंछी जैसी, पेड़ सूखे उड़ जाए, प्रीत कीजिए मछली जैसी, जल सूखे मर जाए, जल सूखे मर जाए।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बिल्कुल, परमात्मा ओ प्यार दा सागर है, जो तो उस परमात्मा दे प्यार दी एक बूंद सानू मिल जाती है ते उदों असी अपने आप नूं धन धन समझना शुरू कर देने हैं।

हजारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को तू खूबी में तब्दील कर देना। मेरी हस्ती है एक खारे समंदर सी मेरे दाता, मेरी हस्ती है एक खारे समंदर सी मेरे दाता, तू अपनी रहमतों से इसे अप मीठी झील कर देना, इसे मीठी झील कर देना।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: Rainbow F.

FM Bayani 102.7 MHz से तो सी सुन रहे सी प्रोग्राम अड्डी टप्पा FM Bayani 102.7 MHz से आकाशवाणी रेनबो दाई जलंधर केंद्र है 9 बज रहे हैं और वेला हो रहा है

हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल से बिल्कुल, दिल से दिल तक का कनेक्शन है और स्ट्रॉन्ग है, और इन्ना स्ट्रॉन्ग है कि तुसी सारे जने कि गए ही नहीं और मैं जाना भी नहीं देना सीगा, और जी तुसी कितने चले जाते ना ते मैं ना खिच धू के प्यार दी जड़ी एक डोर है ना बन्नी हुई साढ़े दरमियान ओनू पा देना सीगा, थोड़े वाल भेज देना सी ते तुसी फटाफट आ जाना सीगा। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ ਲਾਜ਼ੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ 102.7 FM ਰੇਨਬੋ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 103.6 MHz ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਏਅਰ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।

म्यूजिकल ईयर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो और रेनबो दे टाइम हो गया जी फिलहाल 10:22 और जिन्होंने उन्होंने ट्यूनिंग किया उन्होंने तो पता है कि हूँ एक कह लो कि जो गड्डी जा रही होंगी ना तो गड्डी ने देखो अपने स्टेशन तो चेंज करने होंगे और कई बार कोई टाइम इदा आता कि ड्राइवर जरा है ना वही चेंज हो जाता क्योंकि ड्राइवर की ड्यूटी पूरी हो जाती है। सो हूँ सवेर का सफर इंजॉय कर रहे थे हूँ ये जो अगला स्टॉपेज आ गया और जो ड्राइवर है ना वही नवा नवा बस आ गया जी तो इंजॉय करेगा तो तुम इंजॉय करोगे अगला जो सफर है कौन है आवाज़ सुन के थोड़ा जहा अंदाजा लगा लिया चलो नहीं लगाया मैं दस दिन जी। नमस्कार सत श्रीकाल आदाब मैं क्या जी की हाल चाल और रिचा अच फिर एक बार जुड़ चुकी है थोड़े नाल मेरे नाल बहुत सारे दोस्त इस टाइम ट्यून करके FM बिंबो सुन रहे हैं और उन्होंने पता है कि सोहने सोहने जी गीतों की बहार होंगी ना 10 to 11 तक FM रेनबो तो शुरू हो जाती है और हूँ एक गीत दे नाल इस प्रोग्राम यानी गीत बहार की शुरुआत कर रही हूँ जी मैं और मेरे नाल तुसी जुड़े रहना इस प्रोग्राम नू 11 बजे तक इंजॉय करांगे लेकिन मेरे नाल सफर आज 2 बजे तक रहेगा। सो टाइम इज एग्जैक्ट अगैन 10:04 ते 27 सैकेंड चलो फिर इंजॉय कर दें और शुरू कर दें इस प्रोग्राम नू। स्टे ट्यून्ड।

और सफर से अगर हम सफर साथ हो तो सफर खूबसूरत ही बन जाता है ना। सो एंजॉय करो तुसी फिलहाल मेरे नाल म्यूजिकली सफर 102.7 FM रेनबो ते। अच्छा तुसी कदों लास्ट कोई जर्नी की थी, और हो सकता है ये जर्नी तुसी दो दिन पहले की थी हो, इसी महीने की थी हो, या फिर हो सकता है कि आज ही कोई जर्नी खत्म करके आए हो, है ना। खूबसूरत होंगी है जर्नी जिते भी आप जाइए, पहाड़ों पर जाइए, समुद्र के किनारे जाइए, और जाके जो आप वापस आ जाने

वैसे देखो सही था गया कि चैन एक पल नहीं, और जब तक आप कोई चीज सोच रहे हैं ना बहुत टाइम, तो साढ़े दिमाग से कोई चीज चल रही है, कोई भी सपना हो सकता है, कोई ड्रीम हो सकता है या कोई भी काम हो सकता है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता ना सानू सफलता नहीं मिल जाती। चैन सानू किवें मिल सकता है ना, बेचैन जी रहते हैं और मतलब हर टाइम ना उस चीज़ दे वाली साडा ना जिहड़ा दिमाग है ना वो खोया ही रहिंदा कि बस मेरा ये काम हो जाए किसी तरह। सो हो सकता है कि तुहाडे नाल भी कुछ अजिहा चल रहा हो लाइफ च, तुसीं भी इंतजार कर रहे हो कि यार मेरा ये काम कदों होएगा, कदों मैं भी ये जिहड़ा ड्रीम है ना उन्हूं साकार, सपना जिहड़ा ना साकार होंदे हुए दिखांगा। तो टेंशन नहीं लैनी है, क्योंकि देखो अज नहीं तो कल ना सारिआं दी गल जिहड़ी है ना बन ही जांदी है। सो इंतजार करना होंदा बस, हो सकता है अज किसी होर दा टाइम है, लाइन तो पहले मतलब एक जिहड़ी लाइन लगी हुई है ना रब दे कोल, उहदे विच हो सकता तुहाडे तों पहलां कोई लग गया हो है ना, उहदा नंबर अज आ जाए, तो हो सकता है बस अगला नंबर तुहाडा ही हो, इस करके इंतजार करो और बस बिलीव रखना है। बाकी गाने इंजॉय करते रहो जी, गीत बहार प्रोग्राम का नाम, स्टे ट्यून्ड।

लगी थी समोसे खाना थे जाओ, जे पसंद है बाहर जाके बारिश नचना थे नचो, जो चीज अपने आप नूं पसंद है ना वो तो मैं कह रही हूँ जी जनाब जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देखो छोटी जी लाइफ है, इको लाइफ है ना, और दोबारा मिलके पता नहीं कदों मिलना है अपन, नहीं मिलना इस करके आज ही वो दिन है, आज ही वो टाइम है, जाओ निकलो इंजॉय करो और हर एक दिन वो कम जरूर करो जिदे नाल ना दिल नूं सच्ची वाली खुशी मिलती है।

सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा लई सारे जरूरी प्रबंध मुकम्मल। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा कल सवेरे 4 बजे पहले जत्थे नूं हरी झंडी दिखा के रवाना करनगे। पंजाब दे तेजी नाल घट रहे जमीन हेठले पानी नूं संभालण ते सिंचाई बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करन लई पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 34.5 करोड़ रुपए दे कल्याण वाटर कोर्स कंक्रीट लाइनिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मावां तियां सत्कार योजना तहत पंजाब सरकार अज 3 महीनों की सत्कार राशि इको किश्त विच जारी करेगी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब ने बठिंडा दे सरहिंद नहर लिंक रोड नेड़े हुई गोलीबारी तो बाद 4 मुलजमान नूं 2 आधुनिक पिस्तौलां नाल गिरफ्तार किया। अमरनाथ जी की यात्रा से जा रहे 4 श्रद्धालुओं की बठिंडा नेड़े सड़क हादसे विच मौत कई होर जख्मी। अज देश भर च राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है। भारत इंग्लैंड दरमियान मर्दां दी 5 मैचां दी 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लड़ी दा पहला मैच अज चेस्टरली स्ट्रीट दे रिवर साइड ग्राउंड विखे खेडिया जाएगा। 5 तो 18 जुलाई तक बेल्जियम दे आउंदे एक्सपोजर दौरे लई भारत दी मर्दां दी 22 मैंबरी जूनियर हॉकी टीम दा ऐलान कर दिता है। डिफेंडर अनमोलेका टीम दी अगवाई करनगे। इस हुण तक दी FM न्यूज़ हेडलाइंस।

सो वंस अगेन वेलकम बैक जी, प्रोग्राम चल रहा है जी पंजाबी तड़का, और तड़का लग रहा है अज दोस्तों दी फोटोज़ का। अरे मेरा मतलब है याद कर रहे हैं अज असी वाले टाइम नू भी, ते नाल ही नाल फरमाइश

0: और सत जेडे की सेवन कलर्स में है ना जी, सत्ता रंगा नाल बनता है जी रेनबो। और 102.7 FM रेनबो दे एंजॉय करियो प्रोग्राम पंजाबी तड़का। हेलो
1: हेलो मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन दोस्त गल कर रहे ने?
1: मैम

0: ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और 11:55 37 सेकंड हो चुके हैं। मैं क्या, चलो फिर एक और दोस्त फटाफट प्रोग्राम च शामिल करते हैं और उन्होंने फरमाइश सुनते हैं। हेलो
1: हेलो रिचा मैडम, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन दोस्त कॉल कर रहे ने?
1: रिचा मैडम जी, बिट्टू बोल रहा जी, दूरदर्शन की बैक साइड मंगू सी जनरल मैडम जी।
0: जी बिट्टू जी, की हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तुम्हें सुना मेरे जी? बहुत बढ़िया जी, अपने तो तुम्हें सुनाओ।
0: चलो बढ़िया बढ़िया। तुहाडे नाल जुड़िया हुई ने वो कैमरे, पुराने कैमरे वाली फोटोज रखी?
1: ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है जी, अपने को ये पई है जी।
0: अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट
1: लगदी हुंदी सी, उत्थे आपां फोटो खिचाई जी।
0: अच्छा,
1: मोटरसाइकिल ही, लक्कड़ दे मोटरसाइकिल नहीं हुंदे।

और फिलहाल मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मेरा नाम तुहानू पता ही है रिचा, और रिचा के नाल तुसीं कर रहे हो इंजॉय अज दा प्रोग्राम होम स्वीट होम। सो तैयारी आपां मानसून सीजन की कीती है, और तैयारी आपां वैसे जिथे भी जा रहे हो तैयारी तो एक्चुअली

24 and 21 अवेयर हो जाइए कि कुछ चीजां जो अजकल मार्केट च चल रही ने और कि कुछ सानू नवी नवी गाइडलाइनस मिली हुई ने कि आप ये चीजा करिए या वो करिए है ना जिदे नाल आप थोड़ा जिहा सेफ रहिए और अवेयर भी रहिए। सो कई बार की होंगे कि ना टाइम नहीं लगता सानू किचन च है ना कुछ नहीं मिलता फूड सर्व करन ले या फूड पैक करन ले बच्चियां दा या मार्केट आपां जा रहे हैं तो कई बार आपां की देखते हैं कि ना कागज़ां दे विच सानू ना चीज़ां जिहड़ियां ने खाण नू मिलदियां ने है ना। गल कर रही हाँ मैं इंक वाले पेपर खासकर अखबार की मैं गल करा जेकर होंदी आदत है ना कई बार अखबार दे विच समोसा खा लिया कचौड़ी खा ली अखबार वाला पेपर। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है जिहड़े भी इंक वाले पेपर होंदे ने ना गाइडलाइन यही है कि देखो ये ना अपना नहीं ही खाने चाहिए सानू इग्नोर करना चाहिए क्योंकि देखो बहुत सारी बीमारियों का खतरा सिर्फ एक इस एक छोटी जी चीज़ करके हैगा। बिल्कुल तुसीं यकीन करो ना करो बट जेकर आप रेगुलर ये चीज़ कर रहे हैं देखो बहुत सारे आप बदलाव लैके आते हैं अपने हेल्थ लई हेल्दी रूटीन लई हेल्दी चीज़ा लई है ना। सो एक बदलाव ये भी है छोटा जा लाइफ च कि बच्चों नू भी खासकर अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं खाने वाली या बाजारों कोई चीज़ लैके आ रहे हैं तो जिहड़ा अखबार है ना उहदे ते लपेट के वह गर्म गर्म चीज़ का खासकर बिल्कुल ना सर्व करिए बिल्कुल ना खाइए। और बकायदा इस आप कुछ चीज़ा यूज़ कर सकते हैं देखो फूड ग्रेड पेपर होंगे ने है ना नैपकिनस हो गई या बटर पेपर हो गया या फिर घर के बने जोड़े पौने आप कहें कपड़े के है ना जी वो यूज़ कर सकते हैं कल्ला एक फूड कंटेनर दे विच डायरेक्ट खाना पा सकते हैं। कोई भी मतलब जो सेफ चीज़ है इन्हों अपलाई करिए बट जो इंक वाले पेपर है जिन्हों का खतरा है कि वो जी इंक है स्याही है वो छप के खाने पर छप सकती है और सीधा साढ़े पेट च टिड च जानी है साढ़े और कितने नहीं जानी है तो वो हौली हौली हौली हौली करके आपको बीमार बना सकती है बहुत बीमार। सो इस करके छोटिया छोटिया चीज़ों का ध्यान रखिए और एक जो चेंज है ना मैं हमेशा कहती हाँ चेंज करते रहना चाहिए और जिते कुछ नवा सीखने को मिल रहा है सुनने को मिल रहा है उन्हें तो जरूर फॉलो करना चाहिए। अगला गीत गीता जलदार की आवाज़ इंजॉय करते हैं जी स्टे ट्यून्ड।

आई थिंक एक्चुअली दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, और मेरे ख्याल में जिन्हें भी दोस्त इस टाइम सुन रहे हैं उन्हें गीता अजलदार की आवाज आए हाय सॉन्ग दी ना वाइब भी अलग है. सो एंजॉय करो तुसी प्रोग्राम होम स्वीट होम. और देखो जी रोटी का टाइम मेरा मतलब है हूं तो नहीं, बस कुछ ही पलों से हो जाएगा. अच की कुछ खास बनिया थोड़े मेन्यू से भी घर के किचन के खुशबू आ रही है मैनू तो आ रही है. हो सकता आलू गोभी बनी हो या हो सकता है भिंडिया की सब्जी बनी हो, जो मर्जी बना हो रोटी तो खानी है जनाब. और कई बार की होंगे कि रोटी तो आप देखो नॉर्मली बना ही रहे हैं, कुछ लोग ना इलैक्ट्रिक रोटी मेकर का इस्तेमाल करते हैं है ना टाइम नू सेव करने के लिए. बहुत सारे दोस्त करते होंगे. और कई बार की होंगे कि उन्होंने शिकायत होंगी है कि इलैक्ट्रिक रोटी मेकर दे विच ना रोटी कई बार वधिया फुलदी नहीं है या फिर फट जाती है ना, एक वधिया तरीके दे नाल रोटी बनती नहीं है. सो एक्सपर्ट का ये कहना कि जेकर आप भी इस दा इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो करना की है, सब तो पहला तो कोसे कोसे पानी मतलब जोड़ा गुनगुना जहा पानी होंगे ना उसके नाल सानू आटा गुनना चाहिए. आटे से डिपेंड कर रहा है कि रोटी किवें बननी है, इलैक्ट्रिक रोटी मेकर से कोई डिपेंड नहीं करता कि थोड़ी रोटी किवें बननी है, ठीक है आटा डिसाइड करेगा. सो आटा वधिया सानू गुनना चाहिए और एटलीस्ट जो आप आटा उदा डो तैयार कर लिया ना तो 15 to 20 मिनट लेना उन्होंने साइड करके रख दिए. और एक चीज़ होर पॉइंट छोटा जहा नोट करना है इलैक्ट्रिक रोटी मेकर लिए, एक्सपर्ट तो यही कहते हैं कि जोड़ा आप नॉर्मल आटा है ना नॉर्मल तवे से रोटी बना रहे हैं वो जो आटा आप गूंद रहे ना घर च, सो वो तो भी ज़्यादा आटा सॉफ्ट होना चाहिए इस रोटी मेकर लिए. जिन्ना ज़्यादा सॉफ्ट साडा आटा होएगा ना उन्नी ही वधिया रोटी बनेगी. और जो आप सेंटर के रखते हैं ना तो सेंटर के रखने की बजाय ना सानू थोड़ी जी लोई जी है ना रोटी की

0: होता है कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कोई पीडियाट्रिशियन, तो मेरा इस तरह से फिर इंटरेस्ट कैंसर के अंदर बना।
1: ओके सो मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो क्या डॉक्टर्स की लाइफ चैलेंजिंग है, और आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है?
0: चैलेंजिंग तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज होता है वर्क लाइफ बैलेंस का। आप डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हो, जब तक आप पेशेंट देखते हो तब तक आप डॉक्टर होते हो। अब एज अ फीमेल जब आप घर में जाते हो तो आपको दूसरा रोल स्विच कर जाना पड़ता है, तो कई बार उसी बैलेंस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट जहां तक हो सकता है उस बैलेंस को मैं मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, तो मतलब दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज विच प्रोबेबली एवरी डॉक्टर इज फेसिंग।
1: यहाँ पे
0: हाँ
1: ना मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है, वो स्त्री है वो सब कुछ कर सकती है.
0: नहीं, बट मैं एक्चुअली चाहूंगी कि स्त्री सब कुछ नहीं करे तो वो भी अच्छा होता है। मतलब हम कई बार अपने को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करके और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो वो मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। मुझे पता है कि आई एम अ ह्यूमन, आई हैव सर्टेन लिमिट्स, और उसके बियॉन्ड अगर मैं करूंगी तो उसका स्ट्रेस मेरे ऊपर आएगा, जिसकी वजह से मेरा वर्क लाइफ बैलेंस खत्म होगा। तो वो जो स्त्री वाली लाइन है ना, उससे तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ।
1: चलो इससे अग्री नहीं करते, बट समटाइम्स होता है ना कि हम मूवीज में देखते हैं, शोज में देखते हैं, एक ना
0: हाँ
1: डायलॉग बड़े करते हैं डॉक्टर को देखते हुए कि हमने कोशिश तो पूरी की. तो क्या रियल लाइफ में भी
0: एक्चुअली
1: ऐसा कुछ सिचुएशन होती है कभी?
0: रियल लाइफ पे ये डायलॉग मैंने कभी भी यूज नहीं किया है। मुझे पता नहीं है कि कुछ मूवीज के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक सूटकेस का लेके पेशेंट के घर जाते हैं, वो चीज भी मैंने कभी नहीं की जो मैं बचपन से टीवी में देखती आती थी। फिर
1: जी
0: दूसरा है कि बधाई हो आपके घर एक बच्चा हुआ है, मतलब दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई हैव नेवर डन, एंड ऑल्सो हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम नहीं बचा पाए। क्योंकि यूजली क्या होता है कि हम पेशेंट को उनकी कंडीशन डे बाय डे प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं, तो जिससे ये वाला सिचुएशन कभी नहीं आया कि हमने पूरी कोशिश की और हम नहीं बचा पाए।
1: सो ऑन्कोलॉजिस्ट बनने के बाद क्या जिंदगी को देखने का आपका नजरिया भी बदला?
0: बिल्कुल बदला है। क्योंकि ऑन्कोलॉजी के अंदर जैसा लोग समझते भी हैं कि मतलब उसमें डेथ का भी काफी चांस होता है अगर आप एडवांस स्टेजेस में आते हैं, तो मतलब लाइफ और डेथ को हम लोग बहुत पास से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हम इस मोमेंट को अपना जो एंजॉय करना भूल जाते हैं, इस जिस मोमेंट में हम लोग चल रहे हैं उसको जीना भूल जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ना तो हमको पास्ट के ऊपर रिग्रेट करना चाहिए, ना ही फ्यूचर की बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसके फ्यूचर में क्या होना है। तो इस मोमेंट को फील करके जीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लाइफ एंड डेथ दोनों ही हमारे हाथ में नहीं होती है।
1: सो मोमेंट से मुझे याद आया कि कोई बेस्ट मोमेंट या कोई पेशेंट की कोई याद आपकी लाइफ में रही हो, या कोई वर्स्ट भी जो आप शेयर करना चाहते हो.
0: हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनसे हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे अगर आप मेरे पेशेंट्स की बात करते हैं, तो जैसे कीमोथेरेपी के अंदर होता है, कई बार हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि आपके बाल चले जाएंगे, तो मतलब आई हैव सीन वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल्स ऑल्सो जो डे वन ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी के दिन अपने आप जाके अपना हेड शेप करा के हमारे पास आ जाती हैं। तो लाइक दिस इज समथिंग विच नीड्स लॉट ऑफ करेज, और मतलब उन उसको देखकर कई बार मैं भी सोचती हूँ कि मतलब हमें लगता है पेशेंट वीक है, वो इस चीज को सहन नहीं कर पाएगा, बट देर आर सम पेशेंट हु आर टोटली ऑपोजिट, और उनसे हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
1: तो कैसे अपने आप को आप इतना इमोशनली स्ट्रांग रखते हो, क्योंकि देखो नॉर्मल पर्सन है ना हालातों में इनमें डोल जाए, एक डॉक्टर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने आप पर कंट्रोल रखना, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखना. उसके लिए आप क्या कुछ करते हो?
0: उसके लिए वही देखो, आपको उस मोमेंट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जिस समय पे पेशेंट के साथ बात कर रहे हो उस समय पर यू फील द पेन विच पेशेंट इज हैविंग, आप उसके प्रॉब्लम को समझो। कई बार हमको उसके शूज में जाके उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ता है इन ऑर्डर टू लाइक गाइड द पेशेंट, बट फिर इमीडिएटली आपको उससे बाहर भी निकलना होता है। आप उसी पेशेंट के सिचुएशन के अंदर अगर बैठे रहेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डिटैच योर सेल्फ। तो जितना आप उसके साथ इमोशनली उस समय पर अटैच होते हो, इमीडिएटली आपको डिटैच होके फिर नेक्स्ट पेशेंट के साथ भी डील करना होता है। तो मतलब कई बार मुझे लगता है कि भगवत गीता भी हमको यही चीज सिखाती है कि आपको अटैच

0: अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट दोनों ही सेम मोमेंट पर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज के साथ अटैच हो जाएंगे तो आप नेक्स्ट पेशेंट को या अगले मोमेंट को या अपनी लाइफ को आप डील ही नहीं कर पाएंगे।
1: एग्जैक्टली, सो बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे। सो मैम, कैंसर की अब मैं बात करूँ तो कोई कैंसर से जुड़ा मिथ है इस समाज में, सोसाइटी में, जैसे सुनकर ना आपको बहुत गुस्सा आता है कि लोगों ने ये मतलब क्या कुछ अपने तरीके से ही बना रखा है, कुछ ऐसी अफवाह या कोई रूमर?
0: बहुत सारी ऐसी रूमर्स हैं, मतलब अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी बता सकती हूँ, बट दो तीन ऐसी चीजें हैं जिसको देख के मैं डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा इरिटेट होती हूँ। एक है कि पेशेंट बायोप्सी से बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको लगता है बायोप्सी कराया और ट्यूमर बर्स्ट हो जाएगा। बिल्कुल गलत है ये, दिस इज अ मिसकंसेप्शन, जिसकी वजह से पेशेंट्स अपना कई बार इलाज लेने में बहुत ज्यादा डिले करते हैं। दूसरा ये कि जब पेशेंट को कुछ भी कैंसर का शक होता है तो इंस्टेड ऑफ कमिंग टू अस, मतलब वो बहुत सारा यूजफुल टाइम हर्बल मेडिसिन कुछ कुछ और करने में वेस्ट कर देते हैं, विच इज नॉट साइंटिफिक। तो उसकी वजह से भी कई बार हमारे पास एडवांस स्टेजेस में आते हैं। कई बार पेशेंट के जो घर वाले होते हैं वो उनको सलाह दे देते हैं कि फलानी की डेथ हो गई थी हॉस्पिटल जाने से, तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आस पड़ोस के लोग ही डिस्करेज कर देते हैं कैंसर के शक के ऊपर ही, कि वो मतलब सही समय पे हमारे पास पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो उसको देख के कई बार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि आपको ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है, वो आप अपनी फैमिली से डिस्कस करके, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके फिर आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन आप आओ ही नहीं और सिर्फ मिथ के बेसिस पे अपनी लाइफ का एक इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लो, तो उसको देखकर मुझे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है।
1: और मैं पंजाब की बात करूँ तो कौन सा कैंसर यहाँ पे इस टाइम सबसे कॉमन मतलब आप देख रहे हो और रीजन क्या है उसके पीछे?
0: अभी अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन पे है, और ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे कॉजेज हैं हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जिसके अंदर मेजरली हमारा जो खान पान है और सिडेंटरी लाइफस्टाइल यानी किसी भी तरह की एक्टिविटी ना करना, ये दो बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। और अगर मेल्स की बात करते हैं तो फूड पाइप का कैंसर है जो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, अगेन प्रोसेस्ड फूड की कंजम्पशन, प्रोसेस्ड मीट की कंजम्पशन, इन सब की वजह से, और एल्कोहल एंड टोबैको। तो ये मेजरली मतलब हमारे अभी पंजाब के अंदर जो चैलेंजेस हैं कैंसर से रिलेटेड वो।
1: ओके, तो खान पान की बात कर रहे हैं तो कोई एक ऐसी चीज जो एज डॉक्टर आप सलाह देंगे कि हम हमें लाइक वो अवॉइड करनी ही करनी है, और या फिर कोई ऐसी चीज जो हमें ऐड करनी ही करनी है?
0: देखो अगर आप अवॉइड की बात करते हो तो हमको मैं आपको एक छोटा सा वो देती हूँ कि बाहर का कोई भी पैकेज फूड जब भी आप खरीद रहे हैं तो प्लीज चेक द लेबल कि क्या वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं, क्योंकि मोस्टली जो पैकेज फूड होता है उसकी ओवर कंजम्पशन से आजकल कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी। तो ये पांचों चीजें ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड की वजह से हैं, तो प्लीज बहुत ही ज्यादा हमको ध्यान रख के जंक फूड की कंजम्पशन करनी है, और इंक्लूड क्या करना है, एक ऐसी चीज जो बहुत ही अंडर कंज्यूम्ड है हमारी सोसाइटी के अंदर वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो जब मौका मिले आप उसको प्लीज कंज्यूम करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर होता है, जिससे बहुत सारे कैंसर्स की रिस्क हमारे अंदर कम हो जाती है।
1: जी, सो आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पे मैम पब्लिक से, एज डॉक्टर, एज ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, आप पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट कर रही हो जो आपको सुन रही है इस टाइम लाइव, और एक क्या क्या मैसेज उनके लिए देना चाहोगे?
0: देखो ये मैं फीमेल्स को बोलना चाहूंगी, तीन चीजें हैं। सबसे पहला है कि आपके घर पे अगर 9 ईयर के ऊपर की लड़कियां हैं तो उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाली एक वैक्सीन है HPV वैक्सीन, उसको जरूर लगवाएं, क्योंकि वो सर्वाइकल कैंसर को फ्यूचर में हमारे गर्ल्स को होने से बचाएगी। सर्वाइकल कैंसर मैं आपको बता देती हूँ, अभी हमारी कंट्री का और पंजाब का भी सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है लड़कियों के अंदर। तो HPV वैक्सीन, फिर उसके बाद जो लेडीज 25 साल के ऊपर की हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि हर 3 साल में एक बार पैप स्मियर टेस्ट कराएं, इन ऑर्डर टू डायग्नोज सर्वाइकल कैंसर इन एन अर्ली स्टेज।
1: कौन सा टेस्ट बोला आपने?
0: पैप स्मियर टेस्ट। उसके अंदर बेसिकली जो सर्वाइकल कैंसर है उसको अर्ली डायग्नोसिस के अंदर वो हमारी हेल्प करता है। तो 25 साल के ऊपर जो फीमेल्स हैं उसको 3 साल में एक बार ये

0: इसको जरूर कराएं। और जो लेडीज इस प्रोग्राम को सुन रही हैं और वो 40 साल के ऊपर हैं, उनको हर साल में एक बार अपना मैमोग्राफी एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए इन ऑर्डर टू डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर इन एन अर्ली स्टेज।
1: जी, सो बहुत एक अच्छा खास मैसेज भी आपने दिया, और एक अपील कह लो, है ना, डॉक्टर की तरफ से, पब्लिक से एक्सपेक्टेशंस हैं कि अपने आप को देखो, अगर आपने हेल्थी रखना है तो शुरुआत में अगर कोई चीज़, अगर खासकर कैंसर की मैं बात करूं, अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है, इंस्टेड कि आप बहुत उसको लास्ट स्टेज में ले जाएँ। सो बहुत अच्छा लगा मैम, डॉक्टर आंचल अग्रवाल आज आप रेनबो के साथ जुड़े और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की इस खास मौके पर, डॉक्टर्स डे के मौके पर। थैंक यू सो मच मैम।
0: थैंक यू।
1: ओके, सो ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आंचल अग्रवाल, जो कि जलंधर शहर तो साढ़े नाल जुड़े सी, और देखो मैम ने किन्नी अच्छी, मतलब किन्नी सोहनी गल की है कि जिहड़ी कि कुड़ियां ने, आपां कल भी आई थिंक इस बारे गल की सी, जिहड़ी HPV वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर दे रिगार्डिंग, जिहड़ी आई हुई है वैक्सीन HPV वैक्सीन, ये 9 to 14 years तक जिहड़ी सिंगल डोज उन्होंने किया सी शॉट, वह जरूर सानू अपनी बेटियां नू, है ना जी, लगवानी चाहिए। और 30 to 35 years तो बाद जिना टेस्ट मैम ने बोला, और उस तो बाद 40 years तो बाद एक जिहड़ी मैमोग्राफी होंदी है, जिहदे करके जिहड़ा कैंसर है वह अर्ली डिटेक्ट किया जाए कि बॉडी दे विच किते कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि देखो शुरुआती तौर पर कोई चीज़ फड़ लिती जाती है ना, तो उन्हों कह लिए कि प्रिवेंट करना, वो तो बचाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो जानकारी मिल गई है जी, अज खास डे भी असी अपने अंदाज से सैलीब्रेट कर लिया है, हुन सैलीब्रेशन है तो गीत संगीत का माहौल भी होना चाहिए। स्टे ट्यून्ड।

करिए, है ना, होम स्वीट होम प्रोग्राम चल रहा है। और वैसे हेल्दी है ना, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अपने उस होम नू भी हेल्दी होम बनाना और अपने आप नू भी, अपनी बॉडी नू भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आप की करते हैं, बहुत सारे ना अजकल मार्केट से ना ब्रांडिंग कह लो कि वधिया वधिया ब्रांड्स से ना स्मार्टफोन्स आ गए ने, स्मार्ट वॉचेज आ गए ने, है ना। और की कर रहे हैं आप, डिजिटली ज़माना हो गया तो आप भी थोड़े से डिजिटल हो गए। और ये सारिया चीज़ों को फॉलो करते हुए क्या कर रहे हैं कि ना, कई बार जेडे कि स्मार्ट वॉच थे अजकल लोग की करते हैं, अपना बीपी चेक कर रहे हैं, अपनी हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, है ना जी, अपनी कैलोरी काउंट कर रहे हैं कि कुछ खादा मैं, किन्नी को कैलोरीज बर्न की। बट रिपोर्ट तो देखो आई है प्रसार भारती वालों, और की क्या गया कि पिछले कुछ सालों तो ना हेल्थ जिहड़ियां एप्स ने ना, हुण एप्स बहुत सारिया ने, बहुत तरीके दियां ने, फिटनेस ट्रैकिंग एप्स ने या फिर लाइफ स्टाइल नूं लेके एप्स ने, मैंटल हेल्थ नाल रिलेटिड भी एप्स ने जो असीं अपनी फोन च डाउनलोड कीतियां होईयां ने। और इन्हां दे ना असीं यकीन कर रहे ना, मतलब असीं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इन्हां ऐप्स नूं दे रहे हैं ते उन्हां दे बेस ते अपने आप नूं जज कर रहे हैं कि मैनू आ बीमारी हो गई है, मैनू वह बीमारी हो गई है, मेरे हार्ट रेट इन्ना वध गया है ना जी। सो रिपोर्ट दे जरिए आपां, मैं तुहानूं बस इन्ना कहना है कि ये जिहड़ियां चीज़ां ने ना, इन्हां नूं सच नहीं मनना चाहिए। और बकायदा अच डॉक्टर स्टे भी है, सो डॉक्टर दे कोल जाओ, कंसल्ट करो, जेकर सानू अपने शरीर च कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना, हार्ट रेट वध रहा, पौड़ियाँ चढ़ रही, सानू पसीना आ रहा, ज़्यादा आपां चल नहीं पा रहे, तो बजाए उसदे कि आपां ये जिहड़ियां ऐप्स ने या स्मार्ट वॉचेस हैं उहदे ते ट्रैक करिए, थोड़ा जा ट्रैक कर लिए, ट्रैक करके जाइए डॉक्टर को जाइए, अरे डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गया, मैनू देख लो फिलहाल, है ना जी। इस करके अवेयर रहो, यकीन ना करो इन ऐप्स का, बस अपने डॉक्टर दी असल दे विच कंसल्ट करो उन्हां दे नाल और अलर्ट हो जाओ, सेफ हो जाओ। और अगला गीत दिलजीत जी कह रहे हैं एंजॉय कर लो, मैं नहीं कह रही, एंजॉय, स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक।

अरे डांस करना है तो करो, कोई नहीं देख रहा, मम्मी देख रही है, कह रही है डांस करनी चाहो। मेरा घर दे विच आके काम कर ले ना, काम पे आ सफाई करनी है यार, मैंने पता है। सो बहुत सारिया चीजा होंदिया ने जदों आप अपने एक छोटे जे प्यारे जे सोने जे कर दे।

वही मेरी यानी ऋचा दे नाल और इस प्रोग्राम में हूँ टाटा बाय बाय करन दा आ गया है टाइम और ऋचा कितने भी नहीं जा रही है मैं पहले क्या कि टाटा तो मेरा साथ बनिया हुआ है ठीक दोपहर के 2 बजे तक सो जाते जाते इस प्रोग्राम का अखिरला गीत इंजॉय करते हैं जी अरिजीत सिंह की आवाज़ के विच ते उस तो बाद मेलोडियस गीतों का जोड़ा सफ़र है 1 बजे शुरू हो जाएगा सो उसू आप इंजॉय करा स्टे ट्यून्ड।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

दिल के हर जख्म को छुपाने आए, इश्क की राहों में मुस्कुराने तो आए। ना पूछो हमसे वफा की इंतहा क्या है, हर सांस में बस तेरा नाम दोहराए। अब जो भी अंजाम हो हमें गम नहीं, क्योंकि तुमने पुकारा और हम चले आए।

वक्त ने काफी उलझा के रखा था और हमने भी खुद से पर्दा सा कर रखा था। लव्स जो थे सीने में दफन रहे, जज्बात जो थे आंसुओं में बह गए। अब जब नजरें मिली हैं तुमसे यूं, हर खौफ दिल से उतर सा गया क्यों। चलो फिर दिल में जो बातें हैं आज चलो हम कह दें।

नजर मिली तो दिल का हाल बदल गया, तेरी हंसी ने जैसे जादू कर दिया। ना कुछ कहा ना कुछ सुना, फिर भी इश्क का पैगाम पूरा हो गया। बातें भी करेंगे, मुलाकातें भी करेंगे, पर पहले ये तो बताओ चुपके से कि इशारों इशारों में तुमने दिल मेरा ले लिया, ये हुनर तुमने आखिर सीखा कहाँ से?

इशारों इशारों में तुमने दिल ले लिया मेरा, ना सवाल किया ना जवाब दिया मेरा, बस तेरी एक नज़र ने काम तमाम कर दिया, मुझको खुद से भी बेगाना कर दिया। प्यार भी हो गया, इकरार भी हो गया, ख्वाब भी सच गए और ये संसार भी हो गया, फिर भी प्यार से डरता है दिल, क्योंकि नहीं पता इसकी कहाँ है मंजिल।

कल तक जो साए से भी घबराता था, आज तेरे नाम से रोशन हो जाता है। तेरी बाहों में जो सुकून पा लिया, तूफानों से भी टकराना सीख लिया। तुमसे प्यार किया है अब डर नहीं, हाथ थामा है तो हार का भी कोई डर नहीं। तुम्हारा साथ ही तो उससे आगे बढ़ेंगे हम, और तुम साथ हो जब अपने तो फिर दुनिया को भी दिखा देंगे हम।

तुम साथ हो जब अपने तो सब कुछ ही हो जाएगा, हर रास्ता आसान और हर मुश्किल का भी हल हो जाएगा। तुम मेरे साथ रहना हमेशा, ये दिल बस यही दुआ करता है हर लम्हा हर पल। सितारों को छुए हम साथ में, ऊंचा उड़े उस आसमान में, जहां तक नजर जाए बस वही हो अपना घर। क्योंकि जो भी रस्में हैं इस प्यार की, कस्में हैं, उन्हें ना मैं भूलूंगा ना ही तू।

0: तरक्की कर रहा है। विकसित भारत रोजगार ते आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून आज तो लागू हो गया है। देहाती विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबी जी राम जी कानून तहत हरेक माली साल विच 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ये देहाती भारत को मजबूत बनाएगा। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी कानून के लागू होने नूं एक इतिहासक प्राप्ति दसिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में चौहान ने कहा कि यह कानून लखां देहाती कामियां लई स्वै माण अते उपजीविका नूं यकीनी बनाउण विच एक नवां अध्याय दर्शाउंदा है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: उन्होंने कहा कि यह कानून हरेक देहाती परिवार में 125 दिनों के रोजगार का कानूनी अधिकार दिंदा है। इस पहलकदमी में भरोसा प्रकट करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पिंडों में उपजीविका के नए मौके पैदा करेगा। भाजपा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने शुरुआत में विरोध करने तो बाद विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर दी है। नवी दिल्ली में मीडिया को संबोधन करते हुए भाजपा के बुलारे प्रेम शुक्ला ने केंद्र की देहाती रोजगार योजना को लागू करने के पंजाब सरकार के अचानक फैसले से सवाल उठाए। उन्होंने इल्जाम लाया कि भगवंत मान सरकार हुण विधानसभा चोण हारन के डरों बी जी राम जी योजना की शलाघा कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नौजवानों 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने लिए समर्पण ईमानदारी और मजबूत नैतिक कदर कीमतों नाल मुहारत हासिल करने का सदा दिता है। आनंदपुर विखे आंध्र प्रदेश केंद्रीय यूनिवर्सिटी के पहले कन्वोकेशन विच मुख मेहमान वजो संबोधन करदिया राष्ट्रपति ने कहा कि नौजवानों की ऊर्जा से वचनबद्धता एक समावेशी अते खुशहाल राष्ट्र के निर्माण विच फैसलाकुन भूमिका निभाएगी। राष्ट्रपति ने ग्रैजुएट होने वाले विद्यार्थियों जिंदगी भर सीखते रहने लिए प्रेरित किया ते कहा कि तेज तकनीकी तरक्की हर खेतर नूं बदल रही है। उन्होंने कहा कि डिग्री प्राप्त करना सीखने का अंत नहीं होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों उभर रही तकनोलॉजिया मुताबक टलन नवे विचार की पड़चोल कर लगन नवी काढ़ा अपनाने लिए उत्साहित किया। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा xhandle @AIRNewsJalandhar। फौज मुखी जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल नूं प्रभावशाली ढंग नाल हल करन लई फौज दे आधुनिकीकरण नूं तेज कीता जाएगा। 31वें फौज मुखी वजो अहुदा संभालण तों बाद जनरल सेठ ने मीडिया नूं दस्सिया है कि भारतीय फौज का टीचा एक आधुनिक अते तकनीकी तौर ते मजबूत फौज विकसित करना है जो भविख दीआं चुनौतियां दा सामना करन दे पूरी तरह समर्थ होवे।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: उन्होंने कहा कि भारतीय फौज सरहदां ते उभर रहे खतरियां की लगातार निगरानी कर रही है अते किसी भी सुरक्षा चुनौती का सामना करने लिए पूरी तरह तैयार है। जनरल सेठ ने कहा कि उन्होंने मुख ध्यान फौजी रणनीति अते नवीं तकनोलॉजिया की वध तो वध वरतों करन ते होगा। उन्होंने कहा कि नवीनता नूं फौज के संचालन पहुंच मानसिकता अते समर्था विकास विच जोड़िया जाएगा।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: पंजाब विच सवेरे बठिंडा टब वाली राष्ट्रीय शाहराह ते राजस्थान दे 4 श्रद्धालुआं दी मौत हो गई है ते 8 होर मामूली रूप च जख्मी हो गए ने। उन्हां दी गड्डी इक खड़े ट्रक नाल टकरा गई। ए तीर्थ यात्री अमृतसर दे हरिमंदर साहिब ते उस तों बाद अमरनाथ जी यात्रा ते जा रहे सन जदों इह हादसा वापरिया। बठिंडा पुलिस दे हलकियां ने दस्सिया कि जख्मियां दा इलाज चल रिहा, मामले दी जांच जारी है। तेल मार्केटिंग कंपनियां ने 19 किलोग्राम के व्यापारक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 183 रुपए 50 पैसे घटा दी है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मुताबिक नवीं दरां आज तो लागू हो गई ने। इस कटौती तो बाद हुण दिल्ली विच 19 किलोग्राम का व्यापारक एलपीजी सिलेंडर 2930 रुपए विच उपलब्ध होगा। इस फैसले नाल रेस्टोरेंटां, ढाबियां, होटलों ते खाण पीण दे होर कारोबारां नूं फायदा होगा। अज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस

मटके में कोई समंदर को बंद कर सकता है क्या? मटके में कोई समंदर को भर सकता है क्या? जैसे ऋचा ने इंट्रोडक्शन की है, वैसे कोई कर सकता है क्या? सो दोस्तों, तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम मिडे मेलोडीज़, अपनी आरजे दोस्त ऋचा दे नाल। समा इस वेले हो चुका जी दोपहर दे 2 बज के 2 ही बजे ने। सो प्रोग्राम शुरुआत जैसे होने लगी है, थोड़ा अपना फेवरेट दिल आज शायर है।

आपको देख के दिल के हालात मचल जाते हैं, आप सामने होते हो तो हम संभल जाते हैं। जो प्यार से लेते हो नाम मेरा, हम पिघल जाते हैं। जब हमको थाम लेते हो बाहों में, हम संभल जाते हैं। प्यार परी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
3: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।

0: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम,
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
0: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
0: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
0: जी,
1: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
0: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है। तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
0: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
0: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
0: जी,
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
0: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीटेराइट बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं, और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है,

0: कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है, इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
8: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
5: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं

0: राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
4: हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
3: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
4: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
3: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
0: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
5: धन्यवाद
6: मैम। साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली।

0: तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूं कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूं,

0: बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे वाह, ये
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
3: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
2: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
4: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
2: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है अनाज मांगने वाले, करो।
5: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
2: मुखिया जी,
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
7: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
7: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
7: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
7: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
7: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
7: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
8: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
8: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
7: मुखिया जी,
6: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
7: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
6: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
7: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
6: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
7: जैसी आपकी मर्जी।
6: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो।

ये क्या, अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान, इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहाँ जाऊं मैं ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है, अरे बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या, ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। हाँ, अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी

घूम रहा हूं मैं। ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़े धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़ आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। दोस्तों, डॉक्टर्स डे भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन डॉक्टर बीसी रॉय के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इस दिन का उद्देश्य डॉक्टरों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना है, जो अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों की जिंदगी में सुधार लाते हैं। रेडियो डॉक्टर के लिए एक बेहद खास और विशेष दिन होता है डॉक्टर्स डे, जो आज है। इस कार्यक्रम की सफलता उस प्रत्येक डॉक्टर के कारण है जो आपकी समस्याएं यहां सुनते हैं और आप तक समाधान पहुंचाते हैं। हम प्रत्येक डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहेंगे, दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जो यहां आए हैं, समय निकाला है या किसी न किसी तरह से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपने संदेश हम तक पहुंचाए हैं, उन सबका भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज के इस विशेष अंक में हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। स्वभाव से विनम्र और अपने काम के प्रति समर्पित जो हमारे ये गेस्ट हैं, वो रेडियो डॉक्टर की तरह से कई बार आपके सामने आ चुकी हैं, आपसे रूबरू हो चुकी हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता हैं, और हम चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में बहुत सारी उनकी निजी बातें भी आप तक पहुंचे। आप लगभग 30 साल पहले एज रेजिडेंट आपने अपनी सेवाएं शुरू की थी एम्स दिल्ली में, और 2015 से डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी में प्रोफेसर और हेड के रूप में आप कार्यरत हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपको सम्मानित किया जा चुका है, और ग्लोबल सर्वे के अनुसार टॉप 5% साइंटिस्ट में आपकी गणना होती है। बहुत और सी उपलब्धियां हैं हमारी आज की गेस्ट की, अगर मैं बताने बैठूंगी तो शायद कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हम उनसे भी जानेंगे थोड़ा सा उनके बारे में, और आपके भी विचार जरूर सम्मिलित करेंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी हमारे साथ है। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोता पहचान भी गए होंगे कि हमारे साथ आज कौन रेडियो डॉक्टर में है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: बहुत बहुत नमस्कार शालिनी जी, मुझे आज के स्पेशल डे में बुलाने के लिए,
1: और धन्यवाद कि समय निकाला है आप यहाँ आए हैं। और इस खास दिवस पर हम चाह रहे थे कि आपके बारे में बहुत सी बातें, रूमेटोलॉजी संबंधी

0: जॉइंट संबंधी बातें, समस्याएं आप इस कार्यक्रम में बताती रहती हैं, हम हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमारे श्रोताओं की समस्याओं का समाधान करती हैं। पर आज हम जानेंगे एक डॉक्टर की निजी लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा, और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, और जिस मुकाम तक आप पहुंची हैं, किस तरह से, क्या परेशानियाँ, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और क्या लाइफ होती है एक डॉक्टर की, थोड़ा सा चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को भी उसकी झलक मिले आपके माध्यम से। तो आपको भी और हमारे तमाम सुनने वाले को आज की इस विशेष दिवस पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्या कहेंगे आज के इस विशेष दिवस पर?
1: मैं सभी श्रोताओं को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और इस विशेष अवसर पर मैं सभी मरीजों का हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने हमें अपने जीवन का हिस्सा बनने का अवसर दिया, क्योंकि हमारे मरीजों का हम पर विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे मरीज हैं वो सिर्फ मरीज नहीं हैं, बल्कि वो, हम ये मान के चलते हैं कि वो किसी परिवार की उम्मीद होते हैं। तो हमें सिर्फ उनकी बीमारी ही ठीक नहीं करनी होती, पूरी तरह हील करने की ज़रूरत होती है।
0: जी, पूरी तरह से हील करने की ज़रूरत बहुत होती है, और इसमें एक डॉक्टर का एक बहुत रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कोई पेशेंट आपके पास आए एक समस्या के साथ आए, उसके साथ उसके केयर गिवर्स, उसके फैमिली मेम्बर्स एक होप के साथ आते हैं, और हर कोई चाहता है कि डॉक्टर अच्छे से देख ले, बात कर ले। एक समस्या तो अलग अपनी जगह है कि क्या उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप एक व्यवहार की तरह उससे अच्छे से उससे बात करें और उसे बताएं उम्मीद है, इसको ठीक किया जा सकता है, तो वो भी मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है पेशेंट पे।
1: मुझे लगता है कि दवाओं से ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है
0: जी।
1: क्योंकि जब किसी की उम्मीद ही टूट जाए तो कहना चाहिए ज़िंदगी बचती ही कहाँ है, और वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। लेकिन कई बार, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, और मैं तो कहूँगी इन्फेक्शन भी, क्योंकि जब हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करती है, और जब इम्यूनिटी अफेक्टेड होगी तो इन्फेक्शंस होंगे। तो जो आपने होप की बात कही वो बहुत ज़रूरी है मरीज को देना। और दूसरा एक बात और भी है कि जो डॉक्टर है वो भगवान नहीं है, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता वो, और जितना भी हम कहते हैं कि इसमें इतने परसेंट चांसेस हैं आपकी रिकवरी के, या इसमें इतनी मोर्टैलिटी होती है यानी कि डेथ हो सकती है पेशेंट की, वो किसी डेटा पे आधारित होता है, और उस वो डेटा कुछ मरीजों पर इकट्ठा किया जाता है, पूरी पॉपुलेशन पे नहीं होता। और बहुत सारे उसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट की लगाए जाते हैं, तो इस करके हम मरीज को ये कह सकते हैं भाई स्टडी तो ये कहती है लेकिन ऐसा होता है। मैं ये शब्द इस्तेमाल तो नहीं कहूँगी मिराकल्स की उम्मीद देते हैं, लेकिन मिराकल्स होते हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन होप बहुत बड़ी चीज़ है एक उम्मीद देना मरीज को ठीक होने की।
0: बिल्कुल, और दवा जहाँ असर ना करे वहाँ दुआ काम करती है, और जब कोई ज़िंदगी से हारने लगे तो उम्मीद काम करती है, ये बहुत ज़रूरी बात है। आपके कुछ एक्सपीरियंसेस भी हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं से आप शेयर करें जिस बात पर हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले एक बहुत प्यारा सा गीत मैंने निकाला है। अभी आपने कहा डॉक्टर खुदा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है जो भी पेशेंट डॉक्टर के पास पहुँचता है वो इसी तरह से उसको देखता है जैसे कि ये सफ़ेद कोट में एक भगवान खड़ा है, यही मुझे बचा सकता है। उसकी सारी उम्मीदें डॉक्टर्स से ही होती हैं, तो मैंने ये गीत निकाला है सभी डॉक्टर्स को डेडिकेट करते हुए। ये गीत सुनिए, आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा, और श्रोताओं आप भी ज़रूर बताइए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का विशेष अंक नेशनल डॉक्टर्स डे पर समर्पित। और बिल्कुल तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सच में आप लोग एक मूर्ति हैं भगवान को हम देख नहीं सकते, लेकिन कहा यही जाता है कि भगवान जब धरती पे आता है तो वो डॉक्टर का रूप लेता है। और अगर हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस विशेष जो हमारा अंक है उसमें आप हमारे साथी बनकर रहना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप किसी डॉक्टर को जो जिन्होंने आपके जीवन में इस तरह का रोल जो हम बात कर रहे हैं भगवान बनकर कोई चमत्कार किया है, या आपके कोई ऐसे पसंदीदा डॉक्टर हैं जिनको आप लाइव ऑन एयर थैंक यू कहना चाहते हैं, या डॉक्टर उमा कुमार से कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या उनको कोई संदेश भेजना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें कॉल कीजिए, मैसेज करिए। हमारे नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। हमारे नंबर हैं 2342108023421082, और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868107070। और हमारे एक साथी, हमारे श्रोता एक लाइन पर हैं, फोन लाइन पर, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, स्वागत।
1: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी गौतम साहब, कार्यक्रम में स्वागत।
1: डॉक्टर डे पे हमारे सभी चिकित्सकों बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले डॉक्टर तो हमारी शालिनी मित्तल जी है, रोज हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाती है। मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि उन्हें पद्मश्री मिले, पद्म पुरस्कार मिले।
0: बहुत अच्छे, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहिबान से मुझे कहना है कि आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से बताएं। धन्यवाद।
0: वैसे हम आज गौतम साहब किसी बीमारी पे बात नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि मैडम एक हस्ताक्षर हैं बहुत जॉइंट्स डिजीजेस की, उस पर हम काफ़ी कार्यक्रम कर चुके हैं, आर्थराइटिस पर भी कर चुके हैं। पर यहाँ पर एक मैं प्रश्न करूँगी कि आप का एक रिसर्च आपने की है एयर पोल्यूशन एंड आर्थराइटिस पर, उस पर थोड़ा सा हम जानेंगे। आर्थराइटिस पर तो हम कार्यक्रम कर चुके हैं आपके साथ। गौतम साहब क्षमा चाहूँगी, क्योंकि फिर हमारा समय इसी में निकल जाएगा। मैडम से बहुत सारी बातें हमें और करनी है और आप लोगों के मैसेजेस भी लेने। तो वो जो रिसर्च आपने की, वो क्या सोच कर, किस तरह से ये सोच आई? और क्योंकि हमने जैसे सुना है आर्थराइटिस या कोई भी इस तरह की बीमारी, तो उसमें एयर पोल्यूशन का लिंक हो सकता है, ऐसा दिमाग में नहीं आता है। तो वो आपने कैसे शुरुआत उसकी की?
2: देखिए, ऐसा था कि 2009-10 के दौरान ये बात दिमाग में आई कि ऐसा क्यों है कि कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में ही जो गठिया की बीमारी है वो बढ़ जाती है। यानी कि मरीज जो है दवाई ले रहा है, वो ठीक चल रहा है, लेकिन उन महीनों के आते आते बीमारी उसकी एक्टिव हो जाती है। फिर हमें दवाएं बदलनी पड़ती हैं। तो ये एक दो मरीजों में नहीं, काफ़ी बहुत सारे मरीजों में ये चीज़ें देखने को मिली। तो हमें लगा कि कहीं इसका लिंक एयर पोल्यूशन से नहीं ना हो, क्योंकि नवंबर दिसंबर के दौरान, जनवरी फरवरी के दौरान बीमारियां बढ़ रही
0: थी।
2: तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे एक स्टडी की जाए।
0: तो ठंड के साथ साथ एक पोल्यूशन का भी रोल हो सकता है, इस तरह की सोच आई।
2: उन दिनों आप देखिए पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, पोस्ट दिवाली
0: बिल्कुल,
2: और उसी दौरान प्रॉब्लम बढ़ रही थी। तो ठंड में जॉइंट इनएक्टिव होते रहते हैं लोगों के, क्योंकि वो चलते फिरते नहीं, तो दर्द थोड़ा बढ़ सकता है, जकड़न बढ़ सकती है। लेकिन जब हम इन्फ्लेम जॉइंट्स की बात करते हैं और जहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्टिव होने की बात करते हैं, तो वो ठंड का रोल उसमें नहीं आता।
0: ओके,
2: तो दोनों में बहुत फर्क है। तो इसीलिए फिर हमने ये प्लान किया। और मैं यहाँ पे धन्यवाद

0: ना चाहूंगी डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी का, उनकी जो क्लाइमेट चेंज टीम थी, वहाँ से हमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट फंड हुआ और वी वर एबल टू एस्टेब्लिश द लिंक एयर पोल्यूशन और आर्थराइटिस फ्लेयर का.
1: तो फाइनली ये एस्टैब्लिश हुआ कि हाँ ये डायरेक्ट लिंक्ड है.
0: लिंक्ड है.
1: तो उस तरह से आपने फिर बदलाव किया अपने जो
0: और एक
1: पद्धति
0: चीज़
1: में.
0: और देखी उसमें, उसमें हमने देखा कि जो पेशेंट्स 50 मीटर्स के अंदर रह रहे थे मेन रोड के, उनमें ज़्यादा एक्टिव हुई बीमारी बजाय उसके कि जो 200 मीटर से ज़्यादा दूर रह रहे थे मेन रोड के. तो जो डिस्टेंस फ्रॉम रोड टू हाउस इज़ ऑल्सो टेकन एज अ सरोगेट ऑफ एयर पोल्यूशन. तो इसका मतलब यह है कि जो लोग देखते हैं कि सड़क के मेन रोड के पास घर खरीदना है, रहना है, तो वो काफ़ी हद तक हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टि से सही नहीं होता.
1: बिल्कुल बिल्कुल. बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी इस रिसर्च से एस्टैब्लिश हुई होंगी और चिकित्सा जो है उसमें एक बढ़ोतरी हुई है लोगों की समझ में, और इसीलिए आपको सेलेक्ट भी किया गया है ग्लोबली. आप 5% उन लोगों में से हैं जो उनको साइंटिस्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है. बहुत बड़ी बात होती है, और देश के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब आप जाती हैं या कार्यक्रम अटेंड करती हैं तो क्या फील करती हैं कि भारत की क्या स्थिति है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात करते हैं तो.
0: अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी भारत की स्थिति के बारे में मैं कहूँगी कि हम उससे बहुत आगे निकल आए हैं. जहाँ पर हम ये असेस करें कि हमारा भारत कहाँ स्टैंड करता है, हम हमारे भारत में बहुत सारी रिसर्चेस हो रही थी और हो रही हैं अभी. और अगर देखें मैं अपने संस्थान की बात करूं, तो आपको मालूम होगा कि हमारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो दिल्ली का है, वो लिस्ट में काफ़ी ऊपर है. कई जगहों पे वो नंबर 1 है, कहीं जब नंबर 5 है, इवन इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, राइट? तो इसका मतलब ये है कि भारत की जो रिसर्च के डोमेन में जो स्थिति है वो काफ़ी सुदृढ़ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. और लेकिन एक चीज़ है, हमारे पास जो डेटा एक्यूमुलेशन है, लोग तो बहुत हैं, पेशेंट नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको डेटा कलेक्ट करना और उसको फिर ट्रांसलेट करना पब्लिकेशन में, उसमें डिले होता है. क्योंकि मरीज देखने में ही वक्त बहुत निकल जाता है, पेशेंट को मैनेज करने में टाइम निकल जाता है, टीचिंग में निकल जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं.
1: जी, और एम्स को अभी बेस्ट हॉस्पिटल की तरह रिकॉग्निशन भी मिला, मैंने कहीं पढ़ा
0: जी
1: था.
0: बिल्कुल.
1: जी तो
0: एवरी ईयर ये चीज़ हो रही है, वी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट.
1: यस डेफिनेटली, वी ऑल आर प्राउड ऑफ एम्स. और किस तरह से हम कंपीट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और लोग बाहर से अब इंडिया आते हैं और एम्स में आकर दिखाना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है. और देखिए, बहुत सारे हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं और भी डॉक्टर्स को. जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी डॉक्टर के बारे में कोई संदेश देना चाहें, किसी को थैंक यू बोलना चाहें, आप लिख सकते हैं. कोई वाकया आपको याद आ रहा है जहां पर आपको लगा कि अगर ये डॉक्टर हमें ना देखते तो शायद हमारी जिंदगी ऐसी ना होती, या कुछ जो भी मेजर चेंज आया है आपकी लाइफ में, अगर उसको आप रिकॉग्नाइज करना चाहें तो आज का दिन है. बिल्कुल चूकिए नहीं, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और हमारा मंच खुला हुआ है रेडियो डॉक्टर का, जहां पर आप लिख सकते हैं, आप हमें फोन करके बता सकते हैं. हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर. हेलो हेलो, ये कॉल कट गई है, लेकिन मैसेजेस, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे हैं, तो मैं ये मैसेज लेती हूँ. एक दो मैसेज लेने के बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर डॉक्टर्स डे. डॉक्टर अनिल कालरा गुड़गांव से हमें ये मैसेज कर रहे हैं, और अनूप कुमार रांची से लिख रहे हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे. और मुझे बीपी शुगर है, 54 ईयर्स का हूँ, 37 ईयर्स से मुझे प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैं इलाज करा रहा हूँ. डॉक्टर्स को धन्यवाद दे रहा हूँ जो मेरा इलाज कर रहे हैं. विकास कुमार कुशवाहा जी ने हमें नमस्कार भेजा है, इस कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं. और सुधीर कुमार जी कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे. उमा मैम को भी हम कई बार सुन चुके हैं, और एम्स के डॉक्टर यादव जी और डॉक्टर बलजीत डबास, सफदरजंग के भी बहुत सारे डॉक्टर्स को हम सुन चुके हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल को भी धन्यवाद हमारी ओर से. तो ये शुभकामनाएं और धन्यवाद मुझे लगता है डॉक्टर साहब तक पहुंच रहा है अगर कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारे डॉक्टर्स. और मैं यहाँ पर मैसेजेस और लूँगी, आप लोग और मैसेज हमें करिए और कॉल्स करिए. लेकिन मैं ये शुरुआत आपकी जानना चाहूँगी अपने श्रोताओं के लिए, कहाँ से ये जर्नी की शुरुआत हुई जो आज इतने खूबसूरत मुकाम पर है.
0: देखिए, आज मैं ये कह सकती हूँ, हमेशा हम सुनते हैं कि अगर मन का हो तो अच्छा, और ना हो

0: बहुत ही अच्छा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं डॉक्टर तो कभी भी नहीं बनना चाहती थी जब मैं छोटी थी,
1: क्या बनना चाहती
0: थी? IPS बनना चाहती थी, क्योंकि बचपन में जब कुछ गलत होते देखते थे तो लगता था कि उनके पास पावर होती है तो वो उसे रोक सकते हैं। तो ये सोच के साथ मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी तैयारी जारी रखी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि घर में ये कि डॉक्टर की जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे तो वो दिए गए और मैं सेलेक्ट हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फिर बात आई कि ठीक है डॉक्टर बन जाओ और फिर बाद में आप UPSC एग्जाम दे देना। तो हमने मान लिया। लेकिन फिर जब उसके बाद फिर मैं MD के लिए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गई तो फिर युवा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। लेकिन MD तक पहुँचते मतलब मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते मुझे ये एहसास हो गया था, ये सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा था और जो लोगों से इंटरेक्शन थी और कहना चाहिए कि पूरी तरह इसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगी थी, सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई हो रहा था। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई मेडिसिन।
1: अच्छा कि आपने कंटिन्यू किया, हमें इतना अच्छा एक डॉक्टर मिला वो नहीं मिलता अगर आप नहीं कंटिन्यू करती। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार शालिनी जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
1: जी जी मिसेस बेदी बताइए क्या हाल है आपके जी?
2: आज तो एंजल इन वाइट के लिए कितना कहें वो कम है
1: जी। बिल्कुल सही, थैंक यू।
2: कहते हैं ना एंजल इन वाइट, दे आर रियल एंजल्स
1: जी।
2: आज डॉक्टर्स डे पर सबको बहुत बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम लोग।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: और मैं मिसेस बेदी के बारे में बता दूं कि हर कार्यक्रम हमारा सुनती है ना मिसेस बेदी?
2: बहुत एडिक्शन है, आपने नशा दे दिया।
1: और ये नशा अच्छा है, अच्छा। इस नशे को आप चालू रख सकते हैं।
2: आपको बताऊं योग और आपका प्रोग्राम जी, ये मेरा नशा है जिंदगी के।
1: चलिए कुछ नशे अच्छे होते हैं ना डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल एब्सोल्युटली।
2: मैं इनका डॉक्टर्स का कैसे भूल सकती हूँ कि जब एक तो मैं 36 साल से देखो डायबिटिक हूँ। जब मेरा बेटा हुआ था तो डॉक्टर साहब को समझ आ जाएगी मेरी बात कि ही वॉज बॉर्न विथ सीवियर एस्फिक्सिया, ब्लू बेबी था। तो मेरे डॉक्टर ने वो तब स्ट्राइक इतनी थी PGI में, उन्होंने अपने सांस देके मेरे बेटे को बचाया और खुद ही इनक्यूबेटर में छोड़ा है
1: जी।
2: मतलब मैं उनका इस जन्म में कह लो जितना शुक्राना करूँ वो कम है, और भी जन्म चाहिए मुझे।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कॉल किया, इतनी खूबसूरत सी बात आपने यहाँ हमारे गेस्ट के सामने बोली और हाँ। पूरी कम्युनिटी जो डॉक्टर की फ्रेटर्निटी है उन तक आपकी बात पहुंच रही है।
2: शालिनी जी इनका देना हम दे ही नहीं सकते, एक जन्म भी कम है, 60 देना मिल जाए वो भी कम है
1: जी। और देखिए हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर समय निकालते हैं, रेडियो डॉक्टर में आते हैं और इतने व्यस्त शेड्यूल होते हैं उनके। और मैं धन्यवाद दूंगी डॉक्टर उमा कुमार को भी। जी बिल्कुल बताइए।
2: हाँ मैं ना यहाँ चंडीगढ़ यहाँ रेडियो में भी FM लाइफ है ना, वहाँ फोन करती थी, वो थोड़ा सा क्वेश्चन सुनते हैं फिर यहाँ हमारी कॉल बंद हो जाती है, यहाँ जवाब नहीं पूरा मिलता। एक आपका ही प्रोग्राम है जहाँ हम खुल के बात करके पूरा आंसर मिलता है हमें।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
2: आप लोग सब बधाई के पात्र हैं और जो डॉक्टर आए हैं उनको बार बार मेरा नमन है।
1: थैंक यू, बहुत धन्यवाद मिसेस बेदी। और इसी तरह से आप कार्यक्रम में जुड़ती रही, क्योंकि आपके प्रश्न भी कई उन लोगों के प्रश्न बन जाते हैं जो इस कार्यक्रम को सुनते जरूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण प्रश्न नहीं कर पाते हैं।
2: मेरी रेडियो में कॉल थी तो मैंने उनको कहते हैं कि पेशेंट का क्या फर्ज है, मैंने कहा पेशेंट डिसिप्लिन होगा तो डॉक्टर भी उसको मिलकर खुश होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही,
2: ठीक है ना
1: जी। धन्यवाद
2: जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। इसी तरह से रेडियो डॉक्टर से जुड़े रहिए, सुनते बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो डॉक्टर में जो हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, हमारे जो डॉक्टर्स आते हैं वो एक अकम्प्लिश्ड अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं और जो विषय के बारे में वो जानकारी देते हैं वो सब आपके लाभ की होती है। तो हमें ये उम्मीद होती है कि आप अपने प्रश्न इसमें करते रहें, पर आज क्योंकि डॉक्टर्स डे है तो हम चाहते हैं कि हम धन्यवाद दें, दिल से धन्यवाद दें उन लोगों को, उन वाइट एंजल्स को, जैसा उन्होंने बोला दे आर एंजल्स। तो उनको हम कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? आपके पास फ़ोन लाइंस का ऑप्शन है, आपके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन है और आप अगर डॉक्टर उमा कुमार से कुछ पूछना चाहते हैं तो स्वागत है, और किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और लौट कर आएंगे, आपके बहुत से मैसेजेस हमें मिल चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज का ये अंक बेहद विशेष इसलिए है क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है और हम मन से दिल से दुआएं दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं उन सभी डॉक्टर्स को जो समय निकालकर रेडियो डॉक्टर में तो आए ही हैं, साथ ही साथ नहीं भी आए हैं लेकिन

0: देश की सेवा कर रहे हैं, अपने सभी पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल एक भगवान का रूप जैसा हम कह रहे हैं कि वो हैं। और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो हमें धन्यवाद दे रहे हैं मैसेज के ज़रिए और अपने डॉक्टर्स को यहाँ पर थैंक यू बोल रहे हैं, वो मैसेज भी मैं ज़रूर लूँगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया डॉक्टर उमा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे आई इस क्षेत्र में मेडिसिन में, लेकिन जैसे मेडिसिन में आपने पढ़ाई की तो किस तरह से रूमेटोलॉजी में रुख किया, ये कैसे बदलाव हुआ या किस तरह से उस क्षेत्र को चुना आपने?
1: देखिए इसमें भी यह था कि शुरू में मैं सर्जन बनना चाहती थी, क्योंकि जब हम MBBS के बाद इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप में ये हुआ कि मेरा सर्जिकल हैंड बहुत अच्छा था, तो जो सीनियर्स होते हैं और फिर फैकल्टी होती है फिर जब अप्रिशिएट करते हैं फिर कहते हैं हाँ हाँ सर्जरी ले लो सर्जरी ले लो,
0: जी, जी।
1: तो उस सोच के मैंने सोचा कि एक दिन मैं CTVS सर्जन बनूंगी,
0: ओके
1: राइट, विच इज कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जन। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन करने की बात आई तो लोगों से बात किया तो ये सुनने ये बात हो रही है अर्ली 90s एंड 80 लेट 80s के दशक की, तो उस समय ये हुआ कि अगर आप सर्जन बनते हैं तो जो पब्लिक है लोग हैं वो सर्जन मतलब गायनी, राइट, तो आपके पास सिर्फ गायनी एंड ऑब्स्ट्रैक्टिक केसेस ही आएंगे, बाकी के जो हैं वो नहीं आएंगे, राइट। तो फिर ये डिसाइड किया मैंने कि फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मेडिसिन ले लेती हूँ, तो मैंने मेडिसिन
0: किसी से आपने पूछा गाइडेंस ली या सब कुछ आपने डिसाइड किया अपने साथ?
1: नहीं, ऑब्वियसली मैंने बात किया, जो मेरे सीनियर्स थे उनसे बात किया, बाकी के जो सर्कल में डॉक्टर्स थे काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी वेमेन उनसे बात की, ठीक, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं ये नहीं, और चैलेंजिंग होना चाहिए था फील्ड
0: जी।
1: तो मैंने सोचा कि मेडिसिन इज इक्वली चैलेंजिंग, क्योंकि जब मेडिसिन है मेडिसिन में हमारे उसमें मेरिट पेपर या फिर ऑनर्स ऐसे आती थी, तो आई हैड ऑनर्स इन मेडिसिन, तो जो मेरे मेडिसिन के हेड थे मैंने इलाहाबाद से किया जिसे प्रयागराज कहते हैं MBBS, तो उन्होंने फिर ये कहा कि मेडिसिन इज द, वो कह रहे थे मेडिसिन लो, सो देन आई डिसाइडेड टू टेक ऑन मेडिसिन। मेडिसिन लेने के बाद ये हुआ कि मैं उसके बाद DM की बात आई कि भाई सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, तो मैंने सोचा कि चलो कार्डियोलॉजी में करते हैं, फिर मेरी एंगेजमेंट हो गई तो आई फाउंड कि माय हस्बैंड इज इंटरेस्टेड इन कार्डियोलॉजी, सो आई थॉट ठीक है आई टेक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, तो गैस्ट्रो का एग्जाम दिया सेलेक्ट हुई, लेकिन क्योंकि उस समय मेरा बेटा सिर्फ 4 से 6 हफ्ते का था और मैं और मेरे इन लॉज के पास था तो मैं वहाँ जा नहीं सकती थी बार बार, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, छोड़ के छोड़ के फिर मैं एम्स आ गई जहाँ पर माई हस्बैंड वॉज वर्किंग, तो वहाँ आके फिर SR ज्वाइन किया मैंने मेडिसिन में, और उसके बाद जो रूमेटोलॉजी है वो मेडिसिन के अंडर ही एक यूनिट की तरह था, एक डिवीजन की तरह, जिसमें बहुत सारे सीनियर्स थे और कुछ मतलब शुरुआत ही क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी रूमेटोलॉजी की एम्स न्यू दिल्ली में हुई, और ऐसे फिर रूमेटोलॉजी की ट्रेनिंग हुई जब मैं रेजिडेंट थी उस दौरान, तो और होता क्या था कि उस समय दवाएं अवेलेबल नहीं थी, मरीज कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें उनके हाथ जो हैं वो उंगलियां सेल्फ एम्पुटेट हो जाती थी, जिसे ऑटो एम्पुटेशन कहते हैं स्क्लेरोडर्मा में, फिर देखते थे कि आर्थराइटिस हो गई है तो डिजेबिलिटी होगी, पूरी डिफॉर्मिटीज आ गए, व्हील चेयर पे आ रहे हैं, स्ट्रेचर पे पेशेंट आ रहे हैं, और बहुत हेल्पलेस फील होता था, और फिर धीरे धीरे करके उन बीमारियों में भी वो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है सिर्फ स्टीरॉयड्स होते थे और एक और दवा, इवन गोल्ड इंजेक्शंस आर्थराइटिस के पेशेंट को दिए जाते थे और उसके बाद उनको खूब साइड इफेक्ट्स भी उन दवाओं के होते थे, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज होती हैं और मल्टी सिस्टम डिजीजेज होते हैं और बहुत चैलेंजिंग होती हैं इनकी डायग्नोसिस और इनका ट्रीटमेंट।
0: तो ऐसे करके बताया कि डायग्नोसिस बहुत टफ होता है।
1: एग्जैक्टली, तो ऐसे करके फिर रूमेटोलॉजी में मेरा रुझान हुआ और मैं रूमेटोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हुई और ऐसे इसको मैंने अपना सब्जेक्ट बनाया
0: जी। पर उसको एक अलग डिपार्टमेंट बनाना, उसको एक ऐसे लेवल पर लेके आना जहाँ पर वो अभी है, आपने उसका एक डिपार्टमेंट को फाउंड किया, डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी मेडिसिन डिपार्टमेंट से अलग हटके, वो कितना चैलेंजिंग रहा, कितना डिफिकल्ट रहा?
1: देखिए शुरुआत जब हुई, जब मैंने जो मेरे सीनियर्स थे फैकल्टी एट एम्स जब वो चले गए बाहर VRS लेके, तो उस समय मैं एडिशनल प्रोफेसर थी और मुश्किल तो था क्योंकि पूरे डिवीजन की जिम्मेदारी संभालना, और उस समय मरीज तो बहुत ज़्यादा है ही है वो आप जानती हैं, और कई बार ऐसा होता था उस दौरान में कि पेशेंट, तभी बायोलॉजिक्स आए थे और वो बहुत महंगे थे, लाखों में कॉस्ट होती थी, लेकिन जो गवर्नमेंट बेनिफिट

0: फिशरीज थे उनको इजीली अवेलेबल हो जाते थे, तो वो एम्स में लगवाने आते थे. तो उनको लगाने के लिए, जैसे कह रहे हैं कि चेयर पे बैठ के कभी लगाना पड़ रहा है या फिर ट्रीटमेंट रूम में स्ट्रेचर पे लग रहा है, तो मैंने सोचा कि इनके, और फिर भर्ती का अगर करें उनको तो रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, क्योंकि जो वाकई नीडी पेशेंट है जिसको
1: लिमिटेड है आपके पास
0: इंडोर
1: रिसोर्सेस.
0: की ज़रूरत है, वो हम वेस्ट कर रहे हैं बेड. तो मैंने सोचा क्यों ना रूमेटोलॉजी डे केयर बनाया जाए, तो जिसमें पेशेंट आए, अपना इंजेक्शन ले और उसके बाद सेम डे वो वापस चला जाए, या किसी रूमेटोलॉजी पेशेंट जिसकी बायोप्सी होनी है, कोई भी इंटरवेंशन होना है, जॉइंट में इंजेक्शन लगना है, तो वो आए और वो कम्प्लीटली, कहना चाहिए, क्लीन प्लेस हो जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ना
1: हाइजीनिक
0: हो,
1: प्लेस हो.
0: हाइजीनिक हो, इन्फेक्शन के चांसेस ना हो. तो ऐसे करके फिर रूमेटोलॉजी डे केयर की स्थापना 2012 में हुई. और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो देन डायरेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसने सपोर्ट किया, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता. तो हमारा ऐसे 6-बेडेड रूमेटोलॉजी डे केयर शुरू हुआ जो कि बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, और ये मॉडल अब और भी हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे पब्लिक हॉस्पिटल्स हों, उसमें फॉलो हो रहा है. तो
1: जी
0: जब ये बन गया तो हमने सोचा कि डिपार्टमेंट भी होना चाहिए रूमेटोलॉजी का, जिससे कि स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी शुरू किए जा सके और पेशेंट को ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई जा सके. तो फिर उसकी तैयारी शुरू हुई, और उस प्रोसेस में इजी नहीं है कि आपने एक प्रपोजल डाला और वो प्रपोजल
1: जी
0: अप्रूव हो
1: बिल्कुल.
0: गया
1: बहुत
0: और
1: बहुत
0: हो गई,
1: जी.
0: क्योंकि जब मैंने, जब रूमेटोलॉजी में सिर्फ मैं एक फैकल्टी थी और मेरे साथ एक रेजिडेंट था, ये था डिपार्टमेंट, और एक
1: बस
0: क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी लैब हुआ करती थी छोटी बस, और एक ऑफिस मेरा. आज आप देखें तो हमारे डिपार्टमेंट में फैकल्टी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, वोकेशनल काउंसलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, लैब की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है, नए टेस्ट शुरू हो गए हैं, और जो टेस्ट की कॉस्टिंग है वो बहुत ही कम है जो प्राइवेट उस हॉस्पिटल लैब्स में जो मिलती है. हमारी जो क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी लैब है वो एक्रेडिट हो गई है. आपने बात की कि प्रॉब्लम्स क्या हुई. देखिए, जब आप कुछ भी नया शुरू करते हैं तो समस्याएं आती हैं, और मैं इस बात को भी कहना चाहूँगी, अगर वो एक वोमन, एक एक औरत, एक लेडी, एक महिला शुरू करना चाहती है कोई नई चीज़ जो थोड़ी बड़ी हो, और संस्थान बहुत बड़ा है
1: जी
0: एम्स,
1: बिल्कुल.
0: और बहुत ही, कहना चाहिए, पॉलिटिकली कनेक्टेड है ना, एंड इज़ वेरी हाईली प्लेस्ड इंस्टीट्यूशन. तो जो साथ के लोग होते हैं, तो कुछ भी समस्याएं कह लें, वो हम सब प्रोफेशनल्स ने फेस की होंगी, तो वो एक होती है. दूसरा, कई कमेटियों से वो प्रपोजल पास होता है, तो कभी आप कुछ लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, कुछ कन्विंस नहीं होते. कहीं आप इसको देखें तो ये एक पब्लिक गुड के लिए काम था, पब्लिक के फायदे के लिए काम था, इसमें पर्सनल एजेंडा वाजंट देयर. लेकिन हो सकता है कहीं कुछ सोचे कोई कि भाई कुछ पर्सनल गेन हो रहा है, तो कुछ रेजिस्टेंस आए, ऑब्स्टिकल्स वहाँ से आए. लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी और लोगों, श्रोताओं को भी, कि अगर आप अपनी बात को अच्छे से रख पाते हैं, उन्हें कन्विंस कर पाते हैं कि ये काम लोगों की भलाई के लिए है, तो आपको हर क्वार्टर से हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, मतलब हमारी सरकार हो, या फिर हमारा इंस्टीट्यूशन. तो ऐसे मुझे भी सपोर्ट मिला, और बिना उस सपोर्ट के बन ही नहीं सकता था.
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अगर मन साफ है और आपकी इच्छा शक्ति है और आपका करने का जो उद्देश्य है वो हित के लिए है, तो शायद ये बात पहुंचती है और सही डायरेक्शन में पहुंचती है और आगे बढ़ती है. और आप उसका एग्जाम्पल है. मेरे एक श्रोता हमारे काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं. हेलो
2: हेलो.
1: हेलो जी, नमस्कार.
2: हेलो जी, नमस्कार.
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, क्या कहना चाहेंगे?
2: एक तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, जो इतनी जानकारी मैम दे रही हैं उसके लिए धन्यवाद.
1: आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: जी, बेबी सिंघल, मेरठ.
1: जी जी जी, बताइए. कार्यक्रम सुनती हैं?
2: जी, डेली सुनते हैं प्रोग्राम, तो
1: चलिए.
2: नए नए प्रोग्राम आती हैं. शानली मैम,
1: जी थैंक यू सो मच. अच्छा, डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ हैं, क्या कहेंगी डॉक्टर साहब से?
2: डॉक्टर उमा कुमार की उपलब्धियां ही बहुत हैं, इतनी सारी हमें जानकारी मिल रही है.
1: जी जी,
2: आज डॉक्टर दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं.
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
2: आप हमारे जरा बेटे से भी बात करिए, एक मिनट.
1: जी
2: बेटे ले,
1: स्वागत है, जल्दी से बात बताएं. हाँ जी, नमस्कार.
3: नमस्कार
1: जी, आप भी सुनते हैं रेडियो डॉक्टर?
3: हाँ, सुनता हूँ.
1: क्या कहना है, आज का विशेष दिन है.

0: आप डॉक्टर है ना, हैप्पी डॉक्टर्स डे।
1: और आप अपनी उम्र बताइए हमें।
0: मैं 9 साल का हूँ।
1: और क्या नाम है आपका?
0: मेरा नाम वंश जैन है।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वंश हमें इस तरह से कॉल करने के लिए। 9 साल की उम्र है डॉक्टर।
2: दिस इज इनक्रेडिबल, ऑल क्रेडिट्स टू यू,
1: थैंक यू सो मच।
2: बिकॉज 9 साल के बच्चे जो मोबाइल पे और रील्स और उसमें ही रहते हैं, वो प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और सुन के हमें कॉल भी कर रहे हैं और डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आपकी उपलब्धियाँ वो सुन रहे हैं। एक और हमारे श्रोता हमारे साथ है, थैंक यू सो मच वंश हमसे बात करने के लिए।
3: हेलो,
1: हेलो जी, रेडियो डॉक्टर में हैं आप, अपना नाम बता दें। जी राजेंद्र जी, आपकी आवाज कट रही है, एक बार सुनते हैं, नहीं तो दोबारा से आपको कॉल लगाना पड़ेगा। बताइए क्या कहेंगे आज के दिन पर। आपकी आवाज कट के आ रही है, एक बार पुनः ट्राई करें, कोशिश करते हैं आपको पुनः हम अपने कार्यक्रम में जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे रेगुलर लिसनर है, हमें हर कार्यक्रम में कॉल करते हैं और कार्यक्रम को सुनते हैं। आप पुनः हमें कॉल लगाइए। इस बीच में मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ, हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। ये परिधि लिख रही हैं दिल्ली से, विशिंग एवरी वन हैप्पी डॉक्टर्स डे, आई एम अ रेगुलर लिसनर ऑफ रेडियो डॉक्टर, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस शो। ओवर द पास्ट कपल ईयर्स आई हैव लर्न सो मच, नॉट जस्ट अबाउट कॉमन डिजीजेस एंड इलनेसेस बट अबाउट मैनी अदर्स विच आर नॉट वेरी कॉमन। I have learned about precautions to take and early signs and symptoms to detect diseases. Thank you, Akashwani and Shalini ji for curating such rich content for us. Thank you so much. आप 29 years की हैं, तो अभी आप जैसे बता रहे हैं कि reels and उस जो इस दुनिया में हमारे youngsters हैं, लेकिन ऐसे examples बहुत सारे हमारे पास हैं जो हमारे कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं।
2: That is an achievement, actually.
1: जी, और धन्यवाद देंगे हम उन्हीं doctors को, आप जैसे doctors को जो हाँ आते हैं, क्योंकि कंटेंट और आप जो समस्या आप डील करते हैं, जिस तरह से हमारे श्रोता हमें फीडबैक देते हैं डॉक्टर साहब, बताते हैं कि किस तरह से उनको फायदा हो रहा है आप लोगों के यहाँ आने से, और इसीलिए ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है प्रतिदिन, और अब तो ये 1500 से ज़्यादा एपिसोड कर चुका है। तो ये इस बात की एक गवाही है कि लोगों को किस तरह से इस चीज़ में तारीफ, मैं डॉक्टर्स को ही पुनः फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो यहाँ आते हैं तभी हमारे कंटेंट लोगों को पसंद आता है। हमारे एक श्रोता फिर से जुड़ गए हैं, शायद हमारे पुराने श्रोता जो बात करना चाह रहे थे। हेलो,
4: हेलो
1: जी, जी हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए जी आप क्या बोलना चाहेंगे।
4: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी राजेंद्र जी, बताइए।
4: तो पहले तो शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार।
1: जी नमस्कार, स्वागत आपका।
4: और डॉक्टर साहिबा को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
2: नमस्कार।
4: और मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे टू ऑल इंडियन डॉक्टर्स।
2: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच। और आप निरंतर कार्यक्रम को सुनते हैं, इसके लिए आपको भी धन्यवाद।
4: जी, मेरी 3 रिक्वेस्ट है और 1 क्वेश्चन है, प्लीज गाइड करें। पहला सवाल, पहला रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मैम, मेरा मानना यह है कि जब तक डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है और उसकी निगरानी बना रहता है, तो तब तक मेरा मानना कि डॉक्टर का कांटेक्ट नंबर और पेशेंट का कांटेक्ट नंबर एक दूसरे के पास होना चाहिए। बेशक उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए फिर डिलीट कर दो, क्योंकि रात मेरा कभी कोई परेशानी हो सकती है। फिर लोग ये भी कहते हैं कि आप जो है एंटीबायोटिक बैग डॉक्टर से लिए ना खाया करें। तो अगर इस पे गवर्नमेंट ध्यान दें और ये दिल्ली के हिंदुस्तान के सभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल ध्यान दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अब न्यूक्लियर फैमिली का दौर है, तो जॉइंट फैमिली खत्म होती जा रही है, अभी कमी आते जा रही है, तो लोगों के पास टाइम नहीं है कि अपने माँ बाप के साथ या उनके बच्चे या बच्चे अपने माँ बाप के साथ हॉस्पिटल जा सके। तो गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस फैसिलिटी शुरू की है कि आपको आपके घर से हॉस्पिटल तक पहुंचा देगी हो, पर क्या कोई ऐसा गाइडलाइन है कोई प्रोसीजर कि घर से अगर आप हॉस्पिटल तक पहुंच जाए और वहां पर आपको एम्बुलेंस छोड़ देती है, तो उसके बाद जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो आपका वो ट्रीटमेंट कराए और बाद में आपको एम्बुलेंस से ही या फिर अपने किसी स्टाफ के थ्रू पेशेंट को घर तक पहुंचा दे। अगर गवर्नमेंट और हॉस्पिटल और डॉक्टर अगर ऐसा कर सके।
1: राजेंद्र जी, मैं थोड़ा सा टोकूंगी आपको। आज का जो दिन है, हम चाहेंगे कि आप धन्यवाद दें हमारे डॉक्टर्स को, बहुत सारी समस्याएं हैं हमें पता है, और हम प्रतिदिन कार्यक्रम में लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं, पर आज क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता वेट कर रहे हैं, तो हम किसी और दिन आपकी समस्याओं वाला एक ज़रूर कार्यक्रम कर लेंगे। लेकिन आज खास इस मौके पर अगर आप शुभकामना देना चाहें उन सभी डॉक्टर्स को जो यहाँ पर आते हैं, तो हम सबको भी अच्छा लगेगा।
4: हाँ, शुभकामनाएं ये है कि डॉक्टर उमा कुमार और डॉक्टर

0: राकेश यादव इनका समझाने का इतना बढ़िया तरीका है पेशेंट को डील ट्रेड करने का, बल्कि मोबाइल पर ही मतलब फोन कार्यक्रम इतना बढ़िया लगता है कि पेशेंट की आधी प्रॉब्लम मेरा ख्याल है वैसे भी हो जाती होगी। और ए राम मनोहर लोहिया में डॉक्टर ओपी मीना बहुत बढ़िया लगा मुझे।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ कुछ डॉक्टर्स का नाम लिया, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे से कार्यक्रम में आके, यूं कहूं हर डॉक्टर ही अपने आप में बेस्ट है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप को भी धन्यवाद कि आप कार्यक्रम को निरंतर सुन रहे हैं। और मैसेजेस मैं फटाफट लेना चाहूंगी, समय तेज़ी से भाग रहा है। ये मैसेज हमें लिखा है नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से। शालिनी मैम और उमा मैम को डॉक्टर्स डे की बधाई। मैम, मदर टेरेसा ने अपने मिशन में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई जो कि मिसाल है। डॉक्टर उमा को अपने जीवन में कोई मरीज मिला जिसे डॉक्टर उमा ने लास्ट स्टेज से नया जीवन दिया, तो ये जानना चाहते हैं आपसे, और आपको कह रहे हैं कि नतमस्तक होकर नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार। देखिए, मेरा मानना ये है और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जीवन डॉक्टर नहीं देते हैं। जो मरीज़ ठीक होता है वो एक ट्रस्ट है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। डॉक्टर अपने बेस्ट पॉसिबल वेज से, अपनी नॉलेज से मरीज़ को ट्रीट करता है और मरीज़ का विश्वास होता है तो वो जल्दी ठीक होता है। और जहाँ तक बात है, हमारे पास अक्सर ऐसे मरीज आते हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं और कहना चाहिए कि वो ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, और जब वो ठीक होते हैं तो उनके चेहरे की जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है, और हम डॉक्टर्स के लिए वही मोटिवेशन होता है। और आप विश्वास नहीं करेंगी, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ही ऑफ मूड होते हो या आप सोए नहीं हो, आप ट्रैवल कर रहे हो या कुछ और जो भी परेशानी लाइफ में है, जब ओपीडी में आप बैठ जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि घर वालों ने कुछ कहा भी था कि ये काम है या कुछ भी है। फिर जब आप वापस लौटते हो और पूछा जाता है तब याद आता है, अरे ये तो मैं भूल ही गई।
1: वो एक अलग ही दुनिया है,
2: वो एक दुनिया अलग है और वो दुनिया इतनी सेटिस्फाइंग है अगर उसको वो सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम टफ भी होते हैं पेशेंट के साथ, और वो ज़रूरी होता है पेशेंट्स के लिए, उनके मरीजों के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि नंबर नहीं मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि टेलीफोनिकली बहुत ही इमरजेंसी होती है तो कोई बात कर सकता है, कोई सलाह दी जा सकती है, लेकिन मरीज को देखने के बाद ही इमरजेंसी में सलाह देना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार वो गलत भी हो सकती है, तो उसके लिए इमरजेंसीज खुले रहते हैं जहाँ पर कोई भी मरीज उस हालत में जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर टेली संजीवनी की सुविधा शुरू हुई थी, टेली मेडिसिन, तो टेली मेडिसिन से भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। तो तरीके हैं आज की दुनिया में जहाँ पर डॉक्टर से कम्युनिकेट किया जा सकता है, और क्योंकि डॉक्टर लाखों मरीज होते हैं तो पूरे दिन उसका फोन बजता रहेगा और उसे समझ ही नहीं आएगा कि
1: यही मैं कहना चाह रही थी कि आप लोग तो वैसे ही ओवरवर्कड हैं, इतने सारे पेशेंट्स आपके पास होते हैं और उस पर अगर आप बार बार आपको डिस्टर्ब किया जाए फोन करके तो बहुत मुश्किल होगा। मैं भी नहीं करती हूँ कभी, मैं भी मैसेज करके मैम को छोड़ती हूँ कि मैम कभी जब फ्री होंगी तो देखेंगी और जवाब देंगी, क्योंकि हमें एक जिम्मेदारी फील होती है कि जहाँ पर आप पूरी तरह से अपने एक डेडिकेटेड होकर अपना काम कर रहे हैं तो वहाँ कहीं आप हम उस काम में हिंड्रेंस तो नहीं बन रही, ये सोचना हमारा काम है।
2: हाँ, एक चीज और है, देखिए जब हम पेशेंट देखते हैं उस समय आपने पेशेंट को एग्जामिन किया, आप मेडिसिन लिख रहे होते हैं और भी जो चीज़ उसको जरूरी है, तो ये पूरा सुबह, और ये नहीं कि ऐसे 10 मरीजों के लिए करना है, हो सकता है एक दिन में आपके पास 100 या उससे ज़्यादा भी मरीज हो, तो अगर वो टाइम देखें, अगर वो 9 बजे शुरू हुई ओपीडी, उसके बाद जो रात को 8 या 9 बजे किसी पेशेंट का नंबर आ रहा है, तो आप मेंटली कितने एग्जॉस्टेड हो चुके होते हो। आप लोग वैसे भी सोचें अटेंशन स्पैन कितना होता है नॉर्मल लोगों का,
1: और शायद यही सोचकर इस बार की थीम भी कुछ ऐसी मिलती जुलती रखी गई है। मैं एक कॉलर को पहले ले लेती हूँ फिर इस पर भी बात करूंगी। हेलो,
3: नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
3: शालिनी मैम बोल रही
1: हैं? जी बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं यामिन भाई, रेडियो वाला।
1: जी जी यामिन भाई, बताइए क्या कहना है आज?
3: डॉक्टर डे की आपको भी और मैम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: लोग तो हमारे लिए भगवान का रूप है, आज तो मैं यही बोलना चाहूंगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत
3: आप लोगों की इतनी सेवा करते हैं,
1: धन्यवाद।
3: रोज पूछते रहते हैं, आपको धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद यामिन भाई। और जैसा आप कह रही थी कि डॉक्टर्स भी इंसान हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, ओवरवर्कड हैं आप लोग, क्योंकि एम्स में बैठे हैं, और भी अगर मैं किसी भी हॉस्पिटल की बात करूं तो अपनी पूरी निष्ठा से कार्य करता है जब डॉक्टर, तो

0: तरह से एग्जॉस्ट होता है, उसके भी एक जिंदगी है। और इसीलिए इस बार की थीम जो रखी गई है वो है बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। यानी ये भी हमें कहीं ना कहीं सोचना है कि जो हमें हील कर रहा है हीलर, उसको भी कहीं शायद हीलिंग की जरूरत पड़ती हो, क्योंकि मेंटल फिटीग या फिजिकल फिटीग ये सब भी आपके साथ जुड़ता होगा। तो इस थीम पर क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, शायद नहीं, ये हमेशा होता है। डॉक्टर क्या है, आप हम में से ही कोई एक है, सोसाइटी में से कोई एक है। तो जो नॉर्मल समस्याएं होती हैं किसी भी इंसान की, किसी भी परिवार की, किसी भी समाज की, उसके साथ भी वो समस्याएं हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: और दूसरा, दूसरे प्रोफेशन में क्या है कि आप फाइल डील कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वहां किसी की जिंदगी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर आप एक इंसान की जिंदगी को संभाल रहे हैं,
0: बहुत ही जिम्मेदारी का काम है।
1: हाँ, और आप कितने स्ट्रेस में होते हो जब कोई पेशेंट आपके सामने सिक है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, और हर दिन नई नई परेशानी हो रही है, रिलेटिव्स का प्रेशर अलग से आ रहा है, तो कितना मुश्किल होता होगा एक डॉक्टर को उसको हैंडल करना।
0: जी बिल्कुल।
1: और उसमें कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं लोगों को कि आप रिलैक्स करिए, आप 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, आप जिम जाइए, राइट, एंड अपनी हॉबीज को डेवलप करिए और उनको परस्यू करिए। लेकिन आप बताएं कि डॉक्टर के पास वो समय कहाँ से आएगा? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दिन में एक डॉक्टर, और फिर दूसरी बात, डॉक्टर सिर्फ मरीज ही नहीं देख रहा है, वो पढ़ा भी रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, प्रिपेयर कर रहा है फॉर फ्यूचर, राइट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहा है। इसके साथ साथ जो रिसर्च है उसमें भी वो इन्वॉल्व है, जो नई चीजें हो रही हैं, जैसे हमने शुरू में बात की कि रिसर्च में जो ओपिनियन वर्ल्ड लेवल पे बनेगा उस पर एक कॉम्पोनेंट वो भी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इनको सोच के देखें कि कौन सी ऐसी एक चीज है जो डॉक्टर को इतना बैलेंस रखती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर उसका मरीज ठीक होता है, तो फिर वो मरीज और उसके रिश्तेदार आकर जब दो शब्द एप्रिसिएशन के कहते हैं, तो उसको वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी वो नगड़ने लगती है।
0: जी।
1: और वो जो खुशी मिलती है ना, कहते हैं ना इंटरनल हैप्पीनेस,
0: अंदर से जो खुशी कि मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा कर लिया,
1: वो कंटेंटमेंट, वो कहना चाहिए कि बहुत आंतरिक खुशी, राइट, दिखा नहीं रहा है वो सिर्फ चेहरे पे जो हो रही है। वो फिर क्या होता है, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेस कम होगी, तो बहुत सारी चीजें बैलेंस आउट होती हैं उससे।
0: तो लेकिन हैविंग सक्सेस सेड दैट, है वो यही है कि आपका पेशेंट ठीक हो जाए,
1: ठीक हो जाए। और हर डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसका मरीज ठीक हो, क्योंकि जब वो ठीक होगा तो उसका नाम होगा और उसकी जिंदगी चलेगी।
0: बिल्कुल, ये भी सच है, ऐसा कोई नहीं होगा जो ये
1: ना चाहे।
0: बिल्कुल सही बात आपने।
1: और हैविंग सेड दैट, डॉक्टरों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल ऑल्सो। पेशेंट, हम लोगों को कह देते हैं कि आधे घंटे के बाद 2 मिनट्स का ब्रेक लो, आप आई से डिस्टेंस पे देखो, या फिर आप जो है अपने कुछ डेस्क एक्सरसाइजेस करें, राइट, लेकिन डॉक्टर के पास वक्त नहीं होता, वो तो अपना खाना भी स्किप करता है, जो भी और उसकी बाकी की चीज़ें हैं जो होनी चाहिए रोज़मर्रा, सब मिस करता है। डॉक्टर्स अपनी सेहत पे ध्यान दें, वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, और यही इस बार की थीम भी कहती है, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स,
1: एंड दे ओनली हैव टू हील देमसेल्व्स,
0: दे हैव टू हील देमसेल्व्स। एक काफ़ी देर से हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फ़ोन लाइन पर, आइए इनसे बात कर लेते हैं, और समय भी कम बचा है हमारे पास, मैसेजेस भी बहुत हैं। हेलो,
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बता दें।
2: नमस्कार, मैं सपना बात कर रही हूँ दिल्ली से।
0: जी सपना जी, बताएं।
2: हाँ, मैं आज के दिन ये एक अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर्स को थैंक्स करने की।
0: जी बिल्कुल।
2: मैं बचपन से ही अपने बच्चे को बीमार था, वो बीमार रहता था तब से, और अब मैं बीमार रहती हूँ, तो मैं डॉक्टर्स को बहुत गहराई से, पास से ऑब्जर्व करती आई हूँ, और जब भी मैं सीट से उठती हूँ डॉक्टर से मिलने के बाद में, तो मुझे वो दिन डॉक्टर से के जैसा ही लगता है, और मैं हमेशा उन्हें ब्लेस करके ही उठती हूँ, दिल से दुआएं दे करके ही उठती हूँ कि आपकी वजह से कि हम लोगों को कितना सुकून मिलता है। और मैं इतने स्ट्रेस से रहती थी अपने बच्चे के कारण से, मगर पता नहीं हॉस्पिटल जाके डॉक्टर की बात सुनकर बहुत एक अच्छी फीलिंग आती थी, और जब बच्चा उस चीज से रिकवर कर जाता था उस राउंड ऑफ फेज से, तो मैं जरूर कोई ना कोई गिफ्ट भी देखकर आती थी डॉक्टर।

0: मतलब आज का दिन मैंने सोचा कि मैं थैंक्स करूं बिल से,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: अगर
1: सपना
0: बाकी
1: जी
0: डॉक्टर्स
1: कि
0: भी सुन रहे हो।
1: जी जी डॉक्टर सुन रहे हैं और बहुत सारे
0: जी
1: जो ये कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे श्रोता और डॉक्टर्स भी, वो भी सुन रहे हैं, आपकी बात उन तक पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, आपने हमें कॉल किया। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आएंगे, बहुत सारे मैसेजेस हैं उनको शामिल करना है अगर समय मिल पाया तो। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं, हमारे श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी, इतनी बड़ी संख्या में हमें सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। राजेश भल्ला जी कंकड़खेड़ा मेरठ से हमें डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी आर पॉल और पूरा पॉल परिवार जलंधर से हमें सुन रहा है, धन्यवाद दे रहा है कि रेडियो डॉक्टर से इन्हें बहुत जानकारी मिलती है। प्रताप विहार गाजियाबाद से देवदत्त परसोलिया जी लिख रहे हैं, नमस्कार एंड एक्सलेंट प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग डॉक्टर उमा कुमार द स्टूडियोज टुडे। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर से भी हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत सा लंबा मैसेज इनका है पर हमारे पास समय नहीं है कि हम पूरा मैसेज शामिल कर पाएं, हम किसी और कार्यक्रम में ज़रूर आपकी समस्या को लेंगे कोशिश करेंगे। और हैप्पी डॉक्टर्स डे हमें लिखकर भेज रहे हैं हमारे श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है अनीता तेजवानी जी, और उन्होंने लिखा है कि एक दिन रेडियो डॉक्टर में डॉक्टर उमा कुमार को सुना और तब मेरी जो बीमारी है वो डायग्नोस नहीं हो पा रही थी। इन्होंने लिखा है कि जब मैंने सुना डॉक्टर साहब को, ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में आपने एक प्रोग्राम किया था, ये दो प्रोग्राम किया था हमारे साथ, तो उसमें इन्हें लगा कि मैं भी चेक कराऊँ, और इन्होंने ऑटो इम्यून के बारे में जब पता किया तो इन्हें वो बीमारी निकली और अब ये ठीक है। तो डॉक्टर उमा आपको बहुत बहुत दिल से ये धन्यवाद दे रही हैं, थैंक यू सो मच। और सुनील एन के जी ने हमें लिखा है गॉड ब्लेस ऑल रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड गॉड ब्लेस यू, मुझे भी बहुत सी इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग टू अस। और ये कृष्ण साहू जी ने रायपुर से लिखा है डॉक्टर उमा कुमार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम को कंटिन्यूस सुन रहे हैं और बहुत सी बातें इन्होंने और लिखी हैं पर सॉरी मैं ले नहीं पाऊंगी, समय नहीं है। और इसी तरह से हमारे पास और मैसेजेस आए हैं, ये लिखा है लिखने वाले हैं साहिल, इन्होंने भी धन्यवाद

0: लिखा है, शुभकामनाएं दी हैं। पूनम जी ने नांगलोई से हमें लिखा है, कुलदीप राणा जी ने हमें लिखा है, इसके अलावा खुशबू रोहिणी से हमें लिख रही हैं। मैं इनका मैसेज शामिल कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि समय नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं चलते चलते, क्योंकि समय इतना ही है, कि मैं चाहूंगी इस विशेष दिवस पर आप कुछ जो भी मैसेज है हमारे शॉर्ट में हमारे श्रोताओं को देना चाहें प्लीज।
1: मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें कि बीमारी हो ही ना, वही सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा डॉक्टर्स के लिए। और उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगी कि संतुलित आहार लें, व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें। अगर बीमारी होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और हर डॉक्टर के लिए मरीज बहुत ही प्रेशियस होता है। वो अपनी हर संभव कोशिश करते हैं अपने मरीज को बचाने की, उसे ठीक करने की।
0: तो अब इसी संदेश के साथ हम भी अब विदा लेंगे क्योंकि समय अब हमारे पास नहीं है। आप इसी तरह से रेडियो डॉक्टर को सुनते रहिए। हम ये आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधों को संबंधी लेते लेकर आते रहेंगे, नए नए डॉक्टर्स को आपसे मिलवाते रहेंगे। और धन्यवाद देंगे प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार को। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली में। और

0: रेडियो डॉक्टर को सुनते रहिए। हम ये आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधों को संबंधी लेते लेकर आते रहेंगे, नए नए डॉक्टर्स को आपसे मिलवाते रहेंगे। और धन्यवाद देंगे प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार को, आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली में, और आज इस विशेष दिवस पर आप यहाँ आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडे सारयां दा अपना कंठ कलेर ते तुसी सुन रहे हो FM।

0: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही किया उस बंदे ने सेनोरीटा नूं कि प्यार दी कोई भाषा नहीं हुंदी, कोई लैंग्वेज नहीं हुंदी। जिद्दां तुहाडा ते साडा प्यार है वो हर लैंग्वेज विच ही चलदा है। कदी असीं हिंदी अंग्रेजी या पंजाबी विच गल्लां मारदे ही रहने हां, पर प्यार बरकरार रहिंदा है। ते हुण समां हो गया है साडे अगले सैगमेंट दा, रोज़गार समाचार दा। बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन है, तुसीं बड़े ध्यान नाल सुननी है। कॉपी पेन की लोड़ पवे तां वो भी यूज़ कर लो।
1: जी दोस्तों, आ रोज़गार समाचार दा वेला हो गया है, ते असीं लै के आ गए तुहाड़े लिए बहुत सारे रोज़गार समाचार। ते जेकर तुसीं बैंकिंग सैक्टर दे विच अपना करियर बनाना चाहते हो, ते इह जिहड़ी जिहड़ा रोज़गार समाचार है सिर्फ तुहाडे लई है। सबना पहले रोज़गार समाचार है साडा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग परसनल सिलैक्शन दा, यानी कि IBPS वल्लों। इहदे विचों तुहानूं PO ते MT दियां जिहड़ियां 6,715 असामियां लई भर्ती जिहड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दित्ती गई है, ते पूरे 11 सरकारी बैंकां दे विच नौकरी करन दा तुहानूं मौका मिल सकदा है। हुण कुछ महत्वपूर्ण जिहड़ियां डेट्स मैं तुहाडे नाल सांझियां करन जा रही हाँ जी। 30 जून नूं जिहड़ा है कि है साडी रिक्रूटमेंट जारी कर दित्ती गई सीगी। 1 जुलाई तो तुहाडे जिहड़े ऑनलाइन फॉर्म है, मतलब कि अज तो तुसीं फिल कर सकदे हो, फिर 21 जुलाई तक तुसीं इह फॉर्म फिल कर सकदे हो। तुहानूं क्वालिफिकेशन दी गल दस्सीए तां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ

0: जी हाँ दोस्ता दोस्तों, मैंने लगता है कि आशाएं जो हैं वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो इस दे नाल ही हुण साडा आखरी सैगमेंट शुरू होण लगा है, यंगिस्तान।
1: जी दोस्तों, यंगिस्तान सैगमेंट आपां हमेशा लेके आने हैं यूथ न्यूज़ या किसी यूथ आर्टिस्ट दे नाल इंटरव्यू। तो अज भी बड़ी ही इंट्रस्टिंग आपां न्यूज़ लेके आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये जिहड़ियां आशाएं असीं हुणे कह रहे हैं तो आशाएं साडियां होर वधन।
0: बिल्कुल। तो पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 लई नामजदगियां शुरू हो गई हैं। जी, तुसीं जाणदे हो जे इहो जे किसी बच्चे नूं जो खेडां, विज्ञान या कला या समाज सेवा विच बहुत अगे है, तो बिल्कुल उसका नाम तुसीं दे सकते हो। 31 जुलाई तक तुसीं रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि PM मोदी जी हुण उसनूं पुरस्कार देंगे।
1: जी दोस्तों, इस दे नाल ही असीं एक होर तुहाडे लिए यूथ न्यूज़ लैके आए हैं। एक 14 साल दे साडे जिहड़ा भारतीय नौजवान ने AI खेतर दे विच बनाया एक नवा रिकॉर्ड। सिर्फ 14 साल का तो उम्र के बहुत ही छोटा है। तो नाम है जी जैनम जैन ने दुबई के अपना एक AI स्टार्टअप शुरू किया है। तो बुजुर्ग तुम दस दिए कि उन्होंने बुर्ज खलीफा के दफ्तर च काम कर रहा है। तो यह खबर देश के जोड़े नौजवान है उन्होंने एक वड्डी प्रेरणा बन रही है।
0: जी दोस्तों, इस दे नाल ही साडी अज दी आखरी खबर ये है कि युवा विकास दे खेतर विच सरकार दा जोर होर ज़्यादा वध गया। ते जे तुसी सिक्ख्या, स्किल डिवलपमेंट या स्टार्टअप कुछ भी करना चाहते हो या रोज़गार दे मौके लभ रहे हो, तां बिल्कुल सरकार तुहाडे नाल खड़ी है।
1: तो बिल्कुल, मैनूं लगता है एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि यूथ दे लई बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तुसी किसी भी चीज़ च चाहे कोई नॉलेज लैना चाहते हो, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो।

0: जी हाँ दोस्तों, समझ लो ए इशारा वक्त दा, ते समझ जाओ कि हुण जिंदगी नू सिर्फ ते सिर्फ एंजॉय करना है, ते इस दे नाल ही कल इंतजार करना है तुसी ठीक शाम 5 बजे दा, जदों साडा प्रोग्राम फिर तो आएगा युवाणी ओनली ऑन FM बैंड 102.7 MHz। ते हुण दिओ सानू इजाजत, मैं RJ प्रिया,
1: मैं RJ दीक्षा,
0: नमस्कार, नमस्कार।

बिल्कुल जी, धमाकेदार, एनर्जेटिक। मैं कहा जी, इस तो खूबसूरत शुरुआत नहीं हो सकती ना अगर किसी चीज़ की आप करनी है। सो लव यू जिंदगी प्रोग्राम लेके हाजिर हो चुका थोड़ा दोस्त बिपन सुमन। बिल्कुल जी, हर बार की तरह थोड़े नाल करांगे मोटिवेशनल भरपूर गल्लां कहानियां दे रूप च। और वो गल्लां तुसीं अजकल दे बच्चों नूं भी सुना सकते हो, कह सकते हो काका इधर आ गल सुन, जिंदगी च अगे वधना ते आ कहानी जरूर अपने लड़ बन लै। बाकी जी, कुछ हासे दीआं गल्लां भी होणगीआं, एक अद्धी रैसिपी भी तुहाडे नाल शेयर करांगे क्योंकि मौसम अज बहुत सोहणा है। बाकी गीतां दे नाल ते तुहाडा एंटरटेनमेंट फुल ऑन चालू है जी। और अज इदां दीआं गल्लां होणगीआं कि तुसीं आखोगे कि जी साडा ते दिल ही गाउण लग पिआ। सची हुणे गाउण लग पिआ जी? नहीं गाउण लग्गिआ ते मैनूं लगदा कि जिहड़ा असीं इस प्रोग्राम दा पहला गीत प्ले करना है उहनूं सुणन तों बाद ते जरूर गाउण लग पिआ जी। लै के आ रहे हैं जी प्रोग्राम का पहला गीत सतिंदर सरताज की आवाज़

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

102.7 FM रेनबो सुनदिया जी इस प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक आखिरी इसलिए क्योंकि अगले आरजे आ चुके ने जी आरजे परविंदर

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: जरा।

नमस्कार, पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने आज राष्ट्रीय शारशा एनएच 148 ए लई 6 लेन वाली सड़क सुरंग के निर्माण नू मंजूरी दे दिती है। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसंख्या तब्दीलियां बारे कायम उच्च पदरीय कमेटियां नू अपनी सिफारशा छेती ही सौंपण लई कहा है। भारत ते मलेशिया ने अज नवी दिल्ली दे विच 12वीं सब कमेटी की मीटिंग दौरान दुवल्ले फौजी सहयोग के पहलुआं की समीक्षा की। एक राष्ट्र एक चोण बारे सांझी संसदीय कमेटी के चेयरमैन पी पी चौधरी ने लोकसभा अते राज विधानसभावां दीआं चोणां इक्को समय करवाउण लई ते लोड़ ते जोर दिता है। पंजाब समेत देश भर दे विच विकसित भारत रुजगार अते आजीविका गरंटी मिशन ग्रामीण कानून अज तो लागू हो गया है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

हाँ जी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ दे उते मैं तुहाड़ा मित्र आर जे परविंदर तुहाड़े नाल गल्लां बातां करन दे लई इक वार फिर तो हाजिर हो गया जी। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी तुहाड़ा सारिआं दा पसंदीदा बिल्कुल रात दे 9:03:29 हो चुके ने ते प्रोग्राम तुहाड़े सारिआं दा पसंदीदा उही जिसदा इंतजार तुहानूं रोज़ हुंदा है जी। इस टाइम दे उते दिल चाहता है ते इस दे प्रोग्राम दे विच तुसीं करना की है जी अपनी फरमाइश भेजने लिए 9855101027 के उत्ते अपनी फरमाइश भेजनी है एंड फरमाइश भेजने लिए तुसी की करना है जी उस दे नाल गीत दे नाल नाल तुसी उस फिल्म का नाम भी जरूर लिखना है क्योंकि इस प्रोग्राम दे विच सिर्फ फिल्मी फरमाइशा ही पूरी होंदिया ने। तो बिल्कुल FM Index 2.7 मेगाहर्ट्ज़ के उत्ते पहला गीत प्ले करते हैं दैन उस तो बाद इंतजार है जी तुहाड़ियां फरमाइशां का। सो एक एक करके साडे सरोते शुरू हो जाए एंड उस तो बाद थोड़ी सेवा दे विच हाजर हाँ जनाब।

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। कार्यक्रम का आगाज हो चुका है जी, शाम गजल का। कहते हैं कि आज खासा बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, या कहते हैं कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ मैं अक्सर। मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। 102.7 FM रेनबो।

कहते हैं कि नबज्म अपनी ना अपना साकी, ना शीशा अपना, ना जाम अपना। अगर यही है निजाम हस्ती तो जिंदगी को सलाम अपना। 102.7 FM रेनबो, शाम की गजल।

उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। कार्यक्रम चल रहा है जी, शाम 102.7 FM रेनबो।

हाले दिल हम भी सुनाते, हाले दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। 102.7 FM रेनबो, शाम ए गजल।

नमस्कार, 102.7 FM रेनबो आपने ट्यून किया हुआ है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे परविंदर। कार्यक्रम शुरू हो चुका है जी। एक प्यार का नगमा है। कहते हैं कि वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आज़ाद है। इनको खोकर मेरी जाने जान, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो।

कहते हैं कि शहर की रात और मैं नशाद और नकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है, कब तक दर बदर मारा फिरूं। गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि चांदनी रात आज बड़ी देर बाद आई है। चांदनी रात बड़ी देर बाद आई है, लब पे एक रात एक बात बड़ी देर बाद आई है। आज की रात वो आए बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर बाद आई है। 102.7 FM रेनबो।

अजीज इतना ही रखो जो कि संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा।

कोई समझे तो एक बात कहूं, कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं।